0: सभा की शुरुआत करते हैं अनमोल विचार के साथ।
1: नियम जीवन की वो नींव है जिस पर सफलता, विश्वास और चरित्र की मजबूत इमारत खड़ी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमों का सम्मान करता है, वो धीरे धीरे अपने हर लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है। नियम हमें बांधते नहीं, बल्कि हमारी क्षमताओं को सही दिशा देते हैं। अनुशासन और नियमों के साथ किया गया हर प्रयास एक दिन अवश्य सफलता का रूप लेता है। नियमों का पालन करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है।
0: अनमोल विचार के पश्चात श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही आज के भक्ति रस के कार्यक्रम प्रभाती वंदना का समय अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें खीरे की खेती के संदर्भ में। हमारे द्वीप समूह की जलवायु खीरे की खेती के लिए पूरे वर्ष भर उपयुक्त है। दूसरी फसलों की ही तरह खीरे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि हम अच्छी किस्मों का चयन करें। खीरे की अच्छी किस्मों में जापानीज लॉन्ग ग्रीन, बालम खीरा, पूसा अलंकार, पूसा संयोग आदि मुख्य हैं। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग अथवा कृषि विज्ञान केंद्र व केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। साल भर खीरा पाने के लिए इसके बीजों को हर 2 माह के अंतर पर लगाते रहें। खीरे के बीजों को समतल भूमि या टेरेसेस पर पंक्तियों से पंक्तियों के बीच की दूरी 2.5 मीटर व पौधे से पौधे के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हुए लगा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर 3 से 4 बीज लगाएं। ढालू जमीनों पर खीरा लगाने के लिए 2.5 मीटर की दूरी पर त्रिकोण विधि अपनाकर घेरे बनाएं। प्रत्येक घेरे में 5 से 6 बीजों को बोएं। बीज लगाने से पहले तैयार की गई जगहों पर अच्छी सड़ी गोबर की खाद व कीटनाशक का धूल डालें। ढाल पर लगाए गए पौधे में प्रत्येक स्थान पर 3 या 4 पौधे तथा समतल भूमि पर 2 पौधों को रहने दें, बाकी पौधों को निकाल दें। शुष्क मौसम में पानी की सुविधा होने पर 1 हफ्ते के अंतर पर सिंचाई जरूर करें। सूखे के समय पौधे में नमी बनाए रखने के लिए उनके चारों ओर घास फूस का बिछावन बिछाएं। किसान भाइयों, चूंकि खीरे के पौधों की जड़ें भूमि के ऊपरी धरातल पर ही रहती है, अतः अंतराशस्य क्रियाएं करते समय जड़ों के पास की मिट्टी को ज्यादा गहरी न खोदें। पौधों की जड़ों के पास की मिट्टी को ढीला करके खरपतवार वगैरह निकालते रहें। किसान भाइयों, जहां तक खीरे में उर्वरकों का सवाल है, 110 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाना चाहिए। खाद एवं उर्वरकों की सही सही मात्रा का पता लगाने के लिए आप अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। खीरे में नर फूल ज्यादा व मादा फूल कम आते हैं। इसको कम करने के लिए आप जिब्रेलिक एसिड के 10 से 15 PPM घोल का छिड़काव करें। पहला छिड़काव 1-2 पत्ती की अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव 4 पत्ती की अवस्था में करें। किसान भाइयों, हमारे द्वीपों में खीरे में कुछ एक कीड़ों का भी प्रकोप देखा गया है, जिनमें से प्रमुख हैं फल मक्खी तथा रेड पम्पकिन बीटल। फल मक्खी की शिशु अवस्था फलों को अंदर से खाकर नुकसान पहुंचाती है। इससे पूरा फल सड़कर खराब हो जाता है। रेड पम्पकिन बीटल खीरे की फसल में प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर काफी नुकसान पहुंचाती है। इस कीड़े की सुंडियां पौधे की जड़ों को खाकर भी क्षति पहुंचाती हैं। यही नहीं, इनकी सुंडियां जमीन की सतह पर फैली हुई बेलों व पत्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इन कीड़ों के प्रकोप को देखते ही इनके नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। खीरे की फसल में स्टिंग बग व माहू भी हानि पहुंचाते हुए देखे गए हैं। ये दोनों प्रकार के कीड़े पौधों की रसों को चूसकर क्षति करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए भी आप तुरंत उपाय करें। कीड़ों के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जिसके लिए आप पौध रक्षा विशेषज्ञों से सलाह करें। अंतिम उपाय के रूप में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में आधिकारिक रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी सेंटिनल आज शाम 6:30 पर श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर जाएगा। जलयान कल 14 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी सोमवार 15 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। जलयान अगले दिन 16 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जलयान सिंधु कल 14 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप, स्वराद्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर जाएगा। जलयान कल 14 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान आज दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराद्वीप तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराद्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी चंगा आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराद्वीप जाएगा। जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराद्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलुमिलो स्वराद्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वापसी कल 14 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय कल 14 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर जाएगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हडबे कल 14 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराद्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा कल 14 तारीख को दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराद्वीप तथा 2:30 पर स्वराद्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल 14 तारीख को दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराद्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराद्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी पिलुमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद

0: श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी कमोटा कल 14 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और अगले दिन 15 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। श्रोताओं, ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह की 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, आकाश में जब इंद्रधनुष खिलता है तो उसके सातों रंग मन को एक नई उमंग से भर देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी रंगों का बड़ा महत्व है। कभी खुशियों के रंग, कभी सपनों के रंग, तो कभी प्रेम और अपनत्व के रंग हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इन्हीं रंगों की मधुर छटा को समेटे हुए प्रस्तुत है आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम। जब दो दिल एक हो जाते हैं तो उनकी भावनाएं भी एक ही रंग में रंग जाती हैं।

सच ही तो है, प्रेम वो रंग है जो अलग अलग जिंदगियों को एक सुंदर तस्वीर में बदल देता है। लेकिन जीवन केवल एक ही रंग का नाम नहीं है। प्रकृति ने हमें अनगिनत रंगों से नवाजा है, फिर भी कभी कभी मन को कोई एक खास रंग ही सबसे अधिक भा जाता है।

रंगों की दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमय भी। कभी कोई रंग हमारी याद बन जाता है तो कभी कोई रंग हमारे सपनों में बस जाता है, और जब सपनों में सात रंग घुल जाएं तो मन जैसे इंद्रधनुष की सैर पर निकल पड़ता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष, जिसे प्रस्तुत कर रही थी देवकी। श्रोताओं, आज सुबह 7:30 पर सुनना ना भूलिएगा हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा रक्तदाता मानवता के अनमोल प्रहरी, तथा विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मालविका महतो। यदि आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप 232-558 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो समय याद रखिएगा सुबह 7:30। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस कान की 268वीं कड़ी,
1: एपिसोड नंबर 268, 268।

0: रंगों की इस खूबसूरत महफिल में आज हमने महसूस किए प्रेम के रंग, भावनाओं के रंग और सपनों के रंग। तो श्रोताओं, इसी तरह अपने जीवन को खुशियों और उम्मीदों के रंगों से सजाए रखिए। उम्मीद है कि इंद्रधनुष का ये रंगारंग सफर आपको पसंद आया होगा। अब इसी शुभकामना के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष

सुग्रीव को बालीवत के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिनही बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए। अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 268वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और रविंद्र साठे तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया।

श्रोताओं, आपको पुनः एक बार याद दिला दें, आज सुबह 7:30 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप सुन सकते हैं। विषय होगा रक्तदाता मानवता के अनमोल प्रहरी, तथा विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मालविका महतो। यदि आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप 232-558 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो समय याद रखिए, आज सुबह 7:30, विषय होगा रक्तदाता मानवता के अनमोल प्रहरी। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर मालविका महतो। आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जनसेवाओं को कल तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ेंगी। जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान

सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में 16 जून तक ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप सुन पाएंगे। विषय होगा रक्तदाता मानवता के अनमोल प्रहरी, तथा विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मालविका महतो। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी फरीदा खानम। तराने सुहाने कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गीता रामनाथन बेनेट का कर्नाटक शैली में वीणा वादन प्रसारित किया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश आप सुन पाएंगे सुबह 10:00। दिन में 11:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:30। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी तायरा सहित। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि FM 100.9 MHz चैनल पर स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक, और 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा लोकप्रिय गीत सुनवाए जाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की नवी कड़ी आप सुनेंगे 4:30 पर। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5:00 युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम के तहत युगल फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 6:00 होगा किसान वाणी कार्यक्रम। शाम 6:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें के तहत आप श्रीमती खतीजा से ली गई भेंटवार्ता सुन पाएंगे। विषय होगा मेरे कार्यकाल की भूली बिसरी यादें। 6:45 पर सुनिएगा श्री गोपाल शर्मा की लिखी झलकी विरासत की बेटी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन पाएंगे 7:20 पर। शाम 7:30 पर युवाणी में होगा कार्यक्रम ऐसा भी होता है, दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 8:00। और रात्रि 8:35 पर सुनिएगा रोजगार समाचार व गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात्रि 10:00 आप सुन पाएंगे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में US प्रसाद का कर्नाटक शैली में सैक्सोफोन वादन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10:00 आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

इसके तहत पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 28.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 28.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:55 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:54। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 श्री विजयपुरम पहुंचेगा आज दिन में 11 बजे और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा दिन में 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें WhatsApp पर योग सत्र पर लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र से जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकरण डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। ये संस्करण आकाशवाणी उद्घोषणा स्पॉट के लिए उपयुक्त है। 30 सेकेंड सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आपको पुनः एक बार बता दें, आज सुबह 7:30 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप सुन पाएंगे। विषय होगा रक्तदाता मानवता के अनमोल प्रहरी तथा विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मालविका महतो। यदि आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप 2325558 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे स्टडी कोड है 03192। तो समय याद रखिए, आज सुबह 7:30 पर। विषय होगा रक्तदाता मानवता के अनमोल प्रहरी। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर मालविका महतो।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया। भारत एआई मिशन ने कल वारिया नामक एक वीडियो मॉडल की शुरुआत की है। अंडमान निकोबार पुलिस ने पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर परामर्श जारी किया और खेत बचाओ अभियान के तहत माया बंदर में जागरूकता सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। अंडमान और निकोबार विकास, सुरक्षा और पारिस्थितिकी विषय पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्वीप समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री और रक्षा ढांचे के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं, विमानन बुनियादी ढांचे का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट और हाल ही में बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने द्वीप समूह में आज़ाद हिंद फौज सेतु और मिडिल स्ट्रेट ब्रिज के निर्माण, ग्रेट निकोबार और श्री विजयपुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना, INS बाज और INS कोहासा में रनवे का विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी, कचाल तेरेसा और निकोबार के लिए प्रस्तावित सबमरीन केबल योजनाओं, सतत विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस की खोज से इसकी पुष्टि पर भी प्रकाश डाला। भारत AI मिशन ने कलवारिया नामक एक वीडियो मॉडल की शुरुआत की। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वारिया अनुसंधान आधारित क्षमता निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वदेशी AI क्षमताओं को विकसित करने और डीप टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री कृष्णन ने कहा कि मूलभूत मॉडलों के लिए रणनीतिक समर्थन के माध्यम से सरकार बड़े पैमाने पर नवाचार को सक्षम बना रही है और अगली पीढ़ी के AI समाधानों के लिए बुनियाद तैयार कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि वारिया को भारत AI मिशन के सहयोग से AI कंपनी अवतार ने विकसित किया है। नेताजी स्टेडियम खेल परिसर स्थित स्विमिंग पूल को कल से निर्धारित समय और नियमों के अनुसार सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों के लिए नियमित उपयोग के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत मानव सर्वेक्षण विभाग में फिल्मों के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये फिल्म महोत्सव सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिन में 11 बजे आटम और शाम 5:30 बजे से सांड की आंख फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। ये महोत्सव 21 जून तक जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार पुलिस ने पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व अपनी पहुंच और प्रभाव का झूठा दावा कर उम्मीदवारों को चयन का भरोसा दिलाकर उनसे पैसे की मांग कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति या संस्था का कोई प्रभाव नहीं है और चयन पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित है। पुलिस ने उम्मीदवारों से ऐसे लोगों के झांसे में न आने और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की जानकारी तुरंत साझा करने की अपील की है। मध्योत्तर अंडमान जिले के मायाबंदर में कृषि विज्ञान केंद्र निम्बूडेरा और आत्मा के सहयोग से खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया ने अभियान के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए किसानों से अनुशंसित खुराक के अनुसार उर्वरकों और कीटनाशकों का सही तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों को अपनाने और मिट्टी की उर्वरता व गुणवत्ता में सुधार के लिए ढैंचा और सनहेप जैसी हरी खाद वाली फसलों के उपयोग पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने किसानों को आगामी खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन करने के लिए भी प्रेरित किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली के विस्तार निदेशालय आत्मा के उपनिदेशक एस भानुमति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान को लागू करने के सरकार के जनादेश और वर्तमान कृषि परिदृश्य में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के किसानों से फसल की आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित उर्वरक मात्रा अपनाने का आग्रह किया। इस अभियान में कुल 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार निकोबार में अस्मिता साइकिलिंग लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में कुल 56 महिला साइकिल चालकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में आईएस ब्रिडनी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियन का खिताब जीता, जबकि विन्नी मार्टिना को दूसरा, नमिता वॉयलेट को तीसरा और प्रिंसी एंजल को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अध्यक्ष ने भविष्य में आयोजित होने वाले अस्मिता साइकिलिंग लीग में प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पेंचक सिलाट एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ओर से श्री विजयपुरम में हाल ही में पहला राज्य पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय चैंपियनशिप में पूरे द्वीप समूह से 160 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिथियों ने इस टूर्नामेंट के आयोजन और क्षेत्र में मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों को बढ़ावा दिया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। उपराज्यपाल द्वारा इंडिया फाउंडेशन की ओर से नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबार ने चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत फिल्म प्रदर्शन करने के समाचार को भी प्रमुखता से छापा है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने मध्योत्तर अंडमान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और राहत उपायों की समीक्षा करने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने BOCW वेलफेयर बोर्ड की ओर से डिगलीपुर में निर्माण श्रमिकों के लिए जागरूकता और पंजीकरण शिविर आयोजित करने के समाचार को पहले पन्ने पर छापा है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने सचिवालय मार्ग में पेड़ के गिरने के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में विकसित भारत दृष्टिकोण के तहत द्वीप समूह में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया। भारत AI मिशन ने कलवारिया नामक एक वीडियो मॉडल की शुरुआत की। अंडमान निकोबार पुलिस ने पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर परामर्श जारी किया है और खेत बचाओ अभियान के तहत माया बंदर में जागरूकता सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।

नमस्कार, सुस्वागतम। देशराग्नि कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ सोनिया। लेकर आई हूँ ऐसे देशभक्ति फिल्मी गीत जो आपके दिलों में भी जोश जगा दे। देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत आइए सुनते हैं, जिसमें देश को सर्वोपरि कहा गया है।

श्रोताओं, भारत देश वीरों का एक ऐसा देश है जिसके कण कण में प्रेम बसा हुआ है। यहाँ के पावन पुनीत धरती में न जाने कितने वीर और वीरांगनाओं की खुशबू रची बसी हुई है। ऐसे भारत माँ को हमारा शत शत नमन है।

श्रोताओं, आज हम जिस खुले फिजा में सांस ले रहे हैं वो कई देशभक्तों की शहादत का सिला है। उनकी शहादत व कुर्बानियों को सदा याद रखिए और इस मिट्टी के प्रति अपना फर्ज निभाते रहिए।

0: आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है रक्तदाता, मानवता के अनमोल प्रहरी। श्रोताओं, हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है ताकि उन महान रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन देने का कार्य करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि रक्त की हर बूंद में बसती है जीवन की नई कहानी। रक्तदान है मानवता की सबसे खूबसूरत निशानी। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए स्वागत करते हैं जीबी पंत अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी और ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर मालविका महतो का। डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: जी। श्रोताओं, आपको पुनः बता दें, आज का विषय है रक्तदाता, मानवता के अनमोल प्रहरी। इससे संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है आप अभी इसी वक्त पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 232-558। नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, नोट कीजिए, 232-558। एसटीडी कोड है 03192। तो डॉक्टर मालविका जी, कार्यक्रम में पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विश्व रक्तदाता दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है?
1: तो देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये हर साल जो है हम इसको 14 जून मनाते हैं। पर क्यों मनाते हैं ये समझने के लिए आपको इससे पीछे की एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी
0: जी।
1: तो सन 1868 में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था कर्ल लैंडस्टीनर। तो ये जो है आगे चलकर इन्होंने ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का आविष्कार किया। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ये होता है जिसमें, जैसे हम बोलते हैं ना कि इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ है, तो ये चीज़ को जो है इन्होंने डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर जो है सबसे पहले इन्होंने आविष्कार किया था। तो हर साल जो है 14 जून जो है अब इनका जन्म दिवस है, तो हर साल इनको सम्मानित करने के लिए और जो भी हमारे रक्तदाता निस्वार्थ होकर रक्तदान करते हैं तो उनका उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए जो है हम इस दिन का पालन करते हैं।
0: जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है। और कहते हैं ना कि रक्तदान को महादान कहते हैं, तो रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है?
1: बिल्कुल, रक्तदान जो है वो महादान है क्योंकि देखिए, रक्त का जो है कोई विकल्प नहीं होता है। आज भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन अगर हमें रक्त की आवश्यकता होती है तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर करना पड़ता है।
0: जी जी,
1: क्योंकि रक्त को हम कोई भी फैक्ट्री या मशीन के द्वारा जो है नहीं बना सकते हैं। एंड इससे आपका जो रक्तदान है, आपका जो रक्त है, वो किसी का जीवन बचा सकता है। तो इसलिए जो है रक्तदान जो महादान कहते हैं इसको।
0: जी जी, बिल्कुल सही। और जो है एक यूनिट रक्त जो है कितने लोगों की जान बचा सकता है?
1: एक यूनिट रक्त से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। कैसे, ये मैं समझा के कहना चाहूँगी। जब भी कोई डोनर रक्तदान करता है तो वो 1 यूनिट ऑफ ब्लड जो है डोनेट करता है। ये 1 यूनिट ऑफ ब्लड जो है, हमारे पास जो 450 ml का ब्लड बैग होता है तो उसके अंदर में हम ये ब्लड ले लेते हैं। अब ये ब्लड जो है इसको हम होल ब्लड कहते हैं। होल ब्लड का मतलब, यानी इसमें RBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, सारी चीज़ें जो है एक साथ होता है, तो इसलिए हम इसको होल ब्लड कहते हैं। अब ये होल ब्लड को जो है हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसको हम मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, कुछ प्रॉपर टेक्निक्स के द्वारा जो है हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा इससे निकलता है, PRBC बोलते हैं, मतलब जो पैक्ड सेल RBCs होते हैं, तो PRBC निकलता है। उसको फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं तो उससे प्लेटलेट निकलता है और प्लाज्मा निकलता है। तो ऐसे हम एक बैग से जो है हम 3 बैग बना पाते हैं। तो अब जिसको जिसकी आवश्यकता होती है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसको हम RBC चढ़ा देते हैं, जिसका प्लेटलेट कम है, जैसे हम सुनते हैं इनको डेंगू हो गया, प्लेटलेट की मात्रा कम हो गया है, तो तब हम उसको प्लेटलेट चढ़ाते हैं, और जिसका क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है तो उसको हम प्लाज्मा चढ़ाते हैं। तो ऐसे जो है एक होल ब्लड से हम 3 बैग बना सकते हैं और 3 अलग अलग लोगों की ज़रूरत में जो है उनको मदद कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं।
0: जी, कहने का मतलब है कि एक रक्त जो दान करते हैं उससे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो स्वैच्छिक रक्तदान का समाज में क्या महत्व है?

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है जो ब्लड डोनेशन होता है, इससे ब्लड बैंक में हमेशा स्टॉक अवेलेबल रहता है। ब्लड का अगर स्टॉक अवेलेबल हो तो आपातकालीन स्थिति में कोई भी ज़रूरतमंद जो मरीज होते हैं तो फिर उनको रक्त मिल जाता है, एंड इससे जो है हम ऐसे ही उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी, इसीलिए सभी लोगों को जो है इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो है रक्तदान
0: हाँ,
1: करना बहुत
0: वॉलेंट्री जो
1: ज़रूरी
0: ब्लड
1: है।
0: डोनेशन जो है बहुत ज़रूरी है।
1: जी, और कौन कौन व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है, इसके लिए क्या मानक है?
0: बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति जिसका एज जो है वो 18 से 60 ईयर के बीच में है, अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है नॉर्मल रेंज में है, जैसे कि महिलाओं के लिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज होता है 12 to 14 ग्राम पर डीएल, एंड पुरुषों के लिए होता है 13 to 15 ग्राम पर डीएल। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है, आप स्वस्थ है और आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आपका वेट जो है वो 45 kg से ऊपर है, तो आप जो है बेझिझक होकर रक्तदान कर सकते हैं।
1: जी, बीच में रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, तो बातों को हम थोड़ा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे कि रक्तदान जो है कौन कौन व्यक्ति कर सकता है और इसके लिए क्या मानक है, और आगे जानना चाहेंगे कि नियमित रक्तदान स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कितना है। इस प्रश्न का जवाब हम जानेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दें कि इस समय प्राइमरी चैनल पर और FM 100.9 MHz पर आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम, और हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में है वो आप इस समय कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा विषय है रक्तदाता, मानवता के अनमोल प्रहरी, और हमारे नंबर्स हैं 2325588 और स्टूडियो कोड है 03192। और हमारे इस स्टूडियो में आज उपस्थित हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डॉक्टर मालविका महतो। तो श्रोताओं, आपके मन में जो भी प्रश्न इस समय आ रहे हैं वे हमसे कॉल करके आप इस समय अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर पा सकते हैं। तो हमें कॉल जरूर कीजिए 2325588 पर। तो हम बात कर रहे थे रक्तदान के बारे में, तो क्या नियमित रक्तदान स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है?
0: हाँ, ये बिल्कुल ही सुरक्षित है, बिकॉज़ आप जो है हमारे शरीर में जो RBCs होते हैं इनका लाइफ स्पेन जो है 120 डेज़ होता है। तो 120 डेज़ के बाद जो है ये वैसे भी नष्ट हो जाता है एंड दोबारा जो है नई RBC का जन्म होता है। तो अगर आप रक्तदान नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो आपकी RBCs है वो जो है वेस्ट ही हो जाता है एक प्रकार। तो इससे अच्छा है कि आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें जिससे उसकी ज़िंदगी बच सके, एंड ये बिल्कुल ही सुरक्षित है।
1: तो रक्तदान के बाद किन सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए?
0: सावधानियां जैसे कि वो दिन जो है आप स्टे हाइड्रेटेड, मतलब खूब सारा पानी पिए, हल्का भोजन करें, रेस्ट ले, एंड कोई एक्सरसाइज वो दिन जो है अवॉइड करें, एक्सरसाइज ना करें या कोई भारी सामान ना उठाए। बाकी एज यूजुअल जैसे नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वैसे ही।
1: तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, खासकर महिलाएं। तो महिलाओं में रक्तदान को लेकर जागरूकता कितनी आवश्यक है, आप क्या मानती हैं?
0: देखिए, महिलाओं में जो है एक भ्रांति है, उन्हें ऐसे लगता है कि सिर्फ पुरुष ही रक्तदान कर सकते हैं और महिलाएं नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें ऐसे करने से कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन ये जो है ये पूरी तरह से भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए जो है हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, हमें उन्हें महिलाओं को सही जानकारी देनी चाहिए एंड इसके फ़ायदे बताने चाहिए ताकि वो भी जो है वो आगे आ सकते हैं और इसमें जो है अपना योगदान दे सकते हैं।
1: जी, और युवाओं की क्या भूमिका है, युवा जो है इसमें कैसे भाग ले सकते हैं?
0: युवा जो है पहले तो वो स्वयं सामने आए, रक्तदान करे और बाकी लोगों को भी जो है वो प्रेरित कर सकते हैं अपना योगदान देने में।
1: किस उम्र से और कब तक ये जो है रक्तदान हम कर सकते हैं?
0: एक कोई भी व्यक्ति जिसका एज 18 से ऊपर है, ठीक है, 18 से ले जो एडल्ट 18 से 60 इयर्स के बीच में अगर है और आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है, आपको कोई भी गंभीर समस्या नहीं है जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो वो जो और वेट भी ठीक है, एज ठीक है, एज मतलब 18 से ऊपर है, वेट ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो अगर नॉर्मल रेंज में है।

0: तो आप रक्तदान कर सकते हैं।
1: जी, कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी, अपना सवाल बताइएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी है यहाँ पे स्टूडियो पर।
2: जी, तो मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि जैसे कुछ लोग किसी को रक्तदान करने का शौक है, लेकिन समस्या ये रहती है कि कुछ लोग नशा भी करते हैं, जैसे स्मोकिंग करनी, अल्कोहल लेना। क्या ऐसे व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं? अगर कर सकते तो किस तरह से कर सकते हैं? और ऊपर से वो नशे के हालत नशा भी करते हैं, वो किस तरह से वो रक्तदान कर सकते हैं?
0: जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि धूम्रपान और अल्कोहल का जो मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो
2: जी,
0: इस पे। बट आपका प्रश्न ये है कि जो लोग ऑलरेडी ये नशे में हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट लास्ट 24 आवर में ना किया हो। मिनिमम जो है 4 आवर्स पहले तक, ठीक है, 4 घंटे, ये मिनिमम बोल रही हूँ। जो मैक्सिमम लेवल है कि अगर एक दिन पहले तक जो है, बिफोर 24 आवर्स अगर आप लास्ट किए हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम जो है स्मोकिंग के लिए जो है रक्तदान करने से 4 घंटे पहले तक जो है आपने स्मोकिंग अगर ना की हो तो आप रक्तदान कर सकते हैं। और अल्कोहल का जो है, अगर आपने 24 आवर्स पहले लिया है तो ब्लड में जो है उसकी मात्रा फिर धीरे धीरे जो है कम हो जाती है। तो विद इन 24 आवर्स अगर आपने अल्कोहल का सेवन किया है तो आप फिर नहीं कर सकते हैं, उससे पहले किए हैं तो फिर ठीक है, फिर वो मात्रा जो है अल्कोहल की नहीं रहती है तो आप कर सकते हैं।
1: जी, उम्मीद करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा आपको। जी डॉक्टर साहिबा जी, हम बातें कर रहे थे कि युवाओं को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए उसकी क्या भूमिका हो सकती है?
0: युवाओं में जो है हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको स्वयं रक्तदान करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने से प्रेरित करना चाहिए।
1: जी, और कभी-कभी जब आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो उस समय जो है रक्त की उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है?
0: ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले से आपके पास में स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ब्लड बैंक में जो है, यही हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप आगे आए, अपना रक्तदान करें, ताकि हम ब्लड बैंक में जो है अपना स्टॉक रख सके। क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक होता है तो फिर आपातकालीन स्थिति पे जो है आपको लास्ट मोमेंट में फिर भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपके पास अगर स्टॉक नहीं होगा तो तब उस समय जो है समस्या हो जाती है। तो इसलिए जो है हमारे पास, हम लोगों को निवेदन करते हैं कि वो आगे आए और अपना रक्तदान करें।
1: जी, अक्सर देखा जाता है कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ होते हैं उनको रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ना? तो थैलेसीमिया और अन्य गंभीर रोगों के मरीज़ों के लिए रक्तदान कितना ज़रूरी है?
0: देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिक बीमारी है, तो इनके शरीर में जो RBCs होती है, ये जो है ये टाइम से पहले ही है ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये टाइम से पहले नष्ट हो जाते हैं तो इसमें जो इनका जो RBC के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है, तो इनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो एकदम से कम हो जाता है। तो क्योंकि थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है अब तक, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के ज़रिए ही जो है ये जीवित रहते हैं। तो इनको जीवित रखने के लिए ओनली ऑप्शन जो है, एकमात्र ऑप्शन हमारे पास जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन है। तो इसलिए जो है रक्तदान बहुत ही ज़रूरी है।
1: जी, बीच में रोकना चाहेंगे, आपको एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो
1: हेलो जी, कौन कहाँ से
3: जी,
1: बोल रही हैं?
3: मेरा नाम कार्तिका है, मैं जलजर्मा से बोल रही हूँ।
1: जी कार्तिका जी, अपना प्रश्न रखिए।
3: जी, मुझे ये जानना है कि हमारे एक रिलेटिव है, उनको क्या है, थोड़ा सा एक अलग तरह का इशू है कि उन्हें ब्लड उनके शरीर में थोड़ा ज्यादा है। तो 1 साल पहले जब डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ब्लड ज्यादा है और उन्हें ब्लड निकलवाना चाहिए या कहे कि डोनेट कर देना चाहिए, तो उन्होंने बीच बीच में जाकर ब्लड को, मतलब ब्लड अपना निकलवाया तो थोड़ा ठीक थे। अभी उनको फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया है, थोड़ा सा उन्हें BP का इशू है और फिर से ब्लड बन रहा है उनको, और सेम चीज फिर से उनको कर रहे हैं कि उनका ब्लड निकाल रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि ये ऐसा होता क्यों है, क्या इस चीज को पूरी तरह से ठीक हम कर सकते हैं, ये क्या है, मुझे जानना है।
0: देखिए, इस जो बीमारी है उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं।

0: जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जैसा मैंने पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले बताया, जो महिलाओं के लिए जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो है 12 to 14 के बीच होना चाहिए, और पुरुषों के लिए जो है ये 13 से 15 के बीच होना चाहिए। तो अगर जो ये रेंज है, नॉर्मल रेंज है, उससे अगर कम हो जाए तो उसको हम एनीमिया कहते हैं, और नॉर्मल रेंज से अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। कम हो तो भी समस्या है और ज़्यादा हो तो भी समस्या है। जिनका कम होता है वो उससे अनीमिया होता है तो फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है, और जिनका ज़्यादा होता है उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। एंड इसमें जो है जो हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें बढ़ जाता है, मतलब रक्त की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इससे भी जो है शरीर में काफ़ी इससे समस्या होती है। तो इसलिए जो है उसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज को नॉर्मल में लाने के लिए जो है रक्त को निकाल दिया जाता है। तो नहीं, ये पूरी तरह से वैसे ये ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जो है जब भी ज़्यादा होता है उसे रक्त को, उस ज़्यादा रक्त को जो है निकाल कर नॉर्मल रेंज में लाकर रखना, यही इसका ट्रीटमेंट है।
1: अच्छा मैम, एक्चुअली क्या हुआ है, उनको अभी बीपी वगैरह हाई हो गया था, तो उसके बाद ही ब्लड निकाल रहे हैं। तो अगर अगर जैसे कि आपने बताया कि
0: उसके
1: ये
0: साथ
1: बीमारी
0: रिलेटेड
1: पूरी तरह
0: नहीं है
1: से
0: अगर।
1: ठीक नहीं हो सकती, नहीं मैम आपने कहा कि बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, तो एक रूटीन वाइज ट्वाइस इन अ मंथ या फिर थ्राइस, मतलब इस किस तरह से 3 महीने में 4 महीने में कब कब जाके ब्लड को डोनेट करके आना है, ताकि एक माइंड सेट रहे, क्योंकि अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
0: देखिए, हर 3 महीने में जो है इसके लिए उन्हें अपना अपने रक्त की जांच करानी चाहिए, पर्टिकुलरली जो है हीमोग्लोबिन लेवल देखना चाहिए कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। तो क्योंकि जो भी हमारे शरीर में रक्त होता है, आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है 120 डेज होता है, तो 3 महीने के अंदर जो है वो अपना ब्लड चेकअप करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल देख सकते हैं एंड उनका रेंज क्या है, तो अकॉर्डिंगली जो है जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट डिसीजन, वो लिया जा सकता है।
1: जी जी
0: जी
1: जी थैंक यू सो मच मैम,
2: जी
0: थैंक यू।
2: कार्तिका जी, उम्मीद करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। जी डॉक्टर मांडविका जी, हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया, एक गंभीर जो रोग है उसके बारे में, और अभी एक कॉलर भी हमसे जो जुड़ी थी उनकी भी समस्या थी कि उनमें जो है ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है, और थैलेसीमिया में है कि ब्लड नहीं बनता है ना? तो जब थैलेसीमिया के मरीजों को ये रक्त
0: नहीं,
2: की
0: नहीं
2: समस्या,
0: बनता नहीं है, बनता है लेकिन जो है वो टूट जाता है। बेसिकली हम इसको हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, जहाँ पे आरबीसी जो है वो समय से पहले जो है वो नष्ट हो जाता है।
2: और ये जेनेटिक होता है,
0: ये जेनेटिक डिजीज है।
2: तो ये हर महीने उनको चढ़ाना होता है क्या?
0: ये डिपेंड करता है कि सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि ये कितना ज़्यादा सिवियर है, मतलब हीमोग्लोबिन आपका कितना है। अभी किसी का 4 ग्राम भी हो सकता है, किसी का 8 ग्राम भी हो सकता है, तो इसी हिसाब से जो है हम थैलेसीमिया को मेजर माइनर में जो है डिवाइड किया गया है। तो थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, यूजुअली जो है पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम रहता है, तो जब भी ये अगर जो हमारा इंडिकेशन है 8 से नीचे अगर हो, किसी का हीमोग्लोबिन अगर 8 से नीचे है, तो उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट है जिनका 4-5 ग्राम पर डीएल ऐसे इनका जो है हीमोग्लोबिन लेवल रहता है, तो उसमें फिर आवश्यक होता है रक्त चढ़ाना।
2: जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बातें करते हैं। हेलो हेलो,
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: नमस्कार,
2: जी, प्रश्न रखिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं पुरुषोत्तम कपूरथला पंजाब से बात कर रहा हूँ।
2: जी, आपका क्या सवाल है?
3: मेरा सवाल यह है कि मैंने 2-3 दफा ब्लड डोनेट किया और खून कम हो गया, इसके लिए क्या करना चाहिए?
2: जी
0: पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने जो है 2-3 बार अपना रक्तदान किया है, और अगर आपका मतलब आपका अगर हीमोग्लोबिन, खून कम का मतलब है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम है, जो अगर आपका कम है तो जब तक आपका वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता है तब तक जो है आप आगे रक्तदान ना करें। आपका एक बार नॉर्मल रेंज में आने के बाद में फिर आप दोबारा जो है रक्तदान कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको आयन, आप आयन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप प्रॉपर जांच कराएं कि आपको जो एनीमिया हुआ है वो किस प्रकार की एनीमिया है, वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया है या नहीं। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो क्या वो आयन की कमी की वजह से हो रही है या विटामिन B12 फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है। तो आपके जो भी आपके आपका जो नियर बाई स्वास्थ्य केंद्र है आप वहाँ पे जाएं।

0: अपना अपने रक्त की जांच कराए और पता करे कि आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो कम है तो क्यों कम है, तो उसके आधार पे जो है आप अपनी चिकित्सा कराएं, अपने रक्त को नॉर्मल लेवल पे आए, और जब तक आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल लेवल में ना आ जाता है तब तक आप रक्तदान ना करें। एक बार आने के बाद आप फिर दोबारा इस नेक काम में जो है अपना योगदान दे सकते हैं।
1: ओके
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से पंजाब से हमें कॉल किया है, वहाँ से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मानविका, जो दुर्लभ ब्लड ग्रुप होते हैं वो वैसे लोगों की क्या जिम्मेदारियाँ होती है, विशेष जिम्मेदारियाँ?
1: देखिए, कुछ ब्लड ग्रुप्स जो है ये बिल्कुल कॉमन होते हैं, लाइक ए बी, ये सारे जो है कॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो दुर्लभ ब्लड ग्रुप, मतलब जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, लाइक ए बी नेगेटिव या बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग, तो इनको, इनमें डोनर्स हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो ज़रूरत के टाइम पर नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है ब्लड बैंक में हम लोग क्या करते हैं कि एक तालिका है, एक लिस्ट है, जिसमें जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनका नाम हम उसमें लिख कर रखते हैं। तो मेरी ये अनुरोध है, जिनका भी रेयर, जो भी रेयर ब्लड ग्रुप वाले हैं, दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले जो भी लोग हैं, वो आगे आए, अपना नाम दाखिल कराए ब्लड के बैंक में, जो तालिका है उस लिस्ट में अपना नाम दाखिल कराए, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति जब भी आए तो हमारे जो ब्लड बैंक के स्टाफ, जो कर्मचारी हैं, वो उनके संपर्क में आ सके और उन्हें जो है उनसे अपना वो अपना रक्तदान कर सकते हैं।
0: जी, और रक्तदान के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता के क्या मानक अपनाए जाते हैं?
1: पूरी सुरक्षा अपनाई जाती है, लाइक हम इसमें सिर्फ डिस्पोजेबल एंड जो स्टेराइल इक्विपमेंट्स होते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरी तरह से जो है सुरक्षित है।
0: जी, और क्या डायबिटीज़ या बीपी के मरीज जो हैं रक्तदान कर सकते हैं?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी बीमारी नियंत्रण में है, यानी अगर आपका शुगर बीपी दोनों कंट्रोल में है, आप दवाई लेते हैं एंड शुगर बीपी आपका कंट्रोल में है, तो फिर आप रक्तदान कर सकते हैं।
0: जी, और जैसे कि हमारे श्रोता जो अभी जुड़े थे हमसे, वो कह रहे थे कि रक्तदान उन्होंने किया है और उसे कमज़ोरी आई है, तो उस समय क्या ख्याल रखें कि शरीर जो है कमज़ोर ना पड़े?
1: खाना पीना अच्छे से करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, एंड वो दिन ध्यान रखिए कि वो दिन, जिस दिन आपने रक्तदान किया है, वो दिन आप कोई भारी सामान ना उठाए, एक्सरसाइज ना करें, और पर्याप्त आराम करें, तो उसके बाद फिर ठीक हो जाता है।
0: जी, और रक्तदान करने में कितना समय लगता है?
1: ये पूरी प्रक्रिया जो होती है इसमें सब मिला के 20 से 30 मिनट लगता है। तो पहले का जो 20 मिनट होता है, तो उसमें हम थोड़ी हिस्ट्री पूछ लेते हैं, तो उसके बाद जो एक्चुअल टेक्निक है, एक्चुअल प्रोसेस में अराउंड 10 मिनट्स लगता है, एंड लास्ट के जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें हम जो डोनर को आराम करने के लिए कहते हैं, तो सब मिला के जो है 20 to 30 मिनट्स में ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
0: जी, और रक्तदान को लेकर लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, जो डर है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ब्लड डोनेट कर पाएँ?
1: बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो इसमें जो है हमें लोगों को, हम लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं एंड इसके जो भी फायदे हैं वो बता सकते हैं, तो ऐसे जो है हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं एंड उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो आगे आए।
0: और जो पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप?
1: मैं उनको यही सलाह दूंगी कि वो बिल्कुल निडर होके, ये बिल्कुल सुरक्षित है, एंड वो निडर होके जो है वो आगे आ सकते हैं।
0: जी, और अब युवाओं को रक्तदान आंदोलन से जुड़ने के लिए आपका क्या संदेश होगा?
1: देखिए, ब्लड डोनेशन जो है ये एक बहुत ही छोटा सा एक सहज प्रयास है, लेकिन इससे जो है हम लाखों की जिंदगियां बचा सकते हैं, तो ये एक नेक कार्य है, एंड युवा को जो है इसके लिए जो है युवाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए, वो स्वयं भी करे और दूसरों को भी प्रेरित करे, एंड इस नेक काम में जो है अपना, मानवता की रक्षा में इस नेक काम में अपना योगदान दे।
0: जी, डॉक्टर मालविका, आपने रक्तदान के महत्व और इससे जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। आपके बहुमूल्य समय और उपयोगी जानकारी के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो प्रिय
1: थैंक यू सो मच।
0: जी, और प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, रक्तदान महादान है, क्योंकि ये किसी को जीवन का नया अवसर देता है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय था रक्तदाता, मानवता के अनमोल प्रहरी, तथा विशेषज्ञ थी जीबी पंत अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी और ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर मालविका महतो। तकनीकी सहयोग रहा श्री शाहिद और अनिमेश चंद्र रॉय का। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनिया और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल

0: और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड तालितिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित

0: नहीं है।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। फनकारा थी फरीदा खानम।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है पंकज उदास की आवाज़ में। इंदिवर की रचना है, तर्ज बनाई भप्पी लहरी ने। फिल्म का नाम है हम इंतज़ार करेंगे।

आशा भोसले व शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये गीत आइए सुनते हैं फिल्म सागर से। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत तैयार किया है आर.जी. परमन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं।

0: ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
0: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए अब लीजिए, अब सुनिए फिल्म प्रेम रोग का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर व सुरेश वाडकर ने। संतोष आनंद के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कराने का ना रे। चेक चेक, हेलो चेक। अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
1: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बीड़ी, सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पे कॉल करें।
3: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
4: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
3: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
4: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
3: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
4: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
3: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
4: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
3: अब हम कर सकते हैं।
4: अब हमें करना होगा।
3: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
4: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
3: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा

0: जनहित में जारी।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1-800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़ें, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने, और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार व साथी का गाया हुआ ये गीत फिल्म सत्ते पे सत्ता से। गुलशन बावरा के बोल संगीत है आर डी बर्मन का।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक मन एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। इसी के साथ सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना,
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
9: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
8: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
9: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
8: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
9: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
8: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
9: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
8: अब हम कर सकते हैं।
9: अब हमें करना होगा,
8: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
9: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।

0: हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीता रामनाथन बेनेट का वीणा वादन। इनके साथ मृदंगम पर पी श्रीनिवासन और घटम पर एस कार्तिक ने संगति की है। तो पहले सुनिए गीता रामनाथन बेनेट का वीणा पर बजाया राग कपी, जो आदि ताल में निबद्ध है। कृति है टी वरदाचारी की।

ये था राग कपि। आइए अब सुनते हैं इनका वीणा पर बजाया राग भिगाड़ा, जो रूपकम ताल में निबद्ध है, कृति दीक्षितर की है।

श्रुताओं, और अब अंत में प्रस्तुत है राग वचस्पति, जो आधी ताल में निबद्ध है। कृति है पापानासम शिवम की।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बीवी नंबर 1 से, जिसे गाया है अभिजीत और अनुराधा श्रीराम ने। संगीत है अनु मलिक का, बोल लिखे हैं समीर ने।

अब सुनिए बोल फिल्म का एक गीत। संगीत दिया है अतीफ असलम ने, गीत रचना की है इमरान राजा, जिसे गाया है अतीफ असलम और हादिका कियानी ने।

एक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनना होगा। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह, रोज किल्ला, खुशबू गिरिवाल का गाया। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म बागी का ये गीत। बोल कुमार के हैं तथा संगीत से सजाया है।

0: अभी आप विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला की आवाज़ में लव यू मिस्टर कलाकार फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। संगीत से सजाया था संदेश शहदेलिया ने, बोल लिखे थे मनोज मुंतासिर ने।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.9.

0: 9 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer, backed by India's largest charging network. India goes electric.
1: Nexa. एक सूचना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें WhatsApp पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026-20 शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

अभी आप हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीत रचना समीर ने की थी और संगीत अनु मलिक ने। अब सुनिए गुलजार के लिखे इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने, धुन तैयार किए हैं सुखविंदर सिंह और रंजीत बरोट ने। इस गीत को हमने लिया है तीन थे भाई फिल्म से।

एक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकरण डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

श्रोताओं, अभी आप अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में बादशाह फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे संगीत से सजाया था अनू मलिक ने। गीत रचना थी समीर की। अब सुनिए शंकर ईशान लॉय के संगीत निर्देशन में तैयार प्रसून जोशी की गीत रचना, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। फिल्म का नाम है आरक्षण।

एक सूचना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र पर सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़ें, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में आप सुन रहे थे कच्चे धागे फिल्म का एक गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था नुसरत फतेह अली खान ने। अब सुनिए अगला गीत जिसे गाया है गौरव रैना, कर्ष काले ने इसी के लिखे गीत व संगीत को सजाया है तपन राज ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजने को है प्रस्तुत होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लाइफ हो तो ऐसी से एक गीत। गायक कलाकार है सोनू निगम और श्रेया घोषाल। संगीत हिमेश रेशमिया की और रचनाकार है समीर।

अगली पेशकश फिर तेरी याद आए फिल्म से एक गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। कातिल शफाल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

एक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026

को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

अभी आप नदीम शरावन के संगीत और समीर के लिखे इस गीत को सुन रहे थे, जिसे स्वरों से सजाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम था हम हैं राही प्यार के।

उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में फिदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत जतिन ललित का और गीत रचना थी समीर की। अब सुनिए राज फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। समीर के बोल और धुन है नदीम शरावन की।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। रचनाकार वर्मा मलिक के इस गीत को संगीत दिया है सोनिक ओमी ने। फिल्म का नाम है सावन भादो।

0: देरी हुई
1: सगाई
0: दिन को
1: नहीं
0: शाम को
1: ना
0: रात को
1: प्रभात को
0: अरे नहीं
1: फिर कब

0: तीखा
1: नहीं,
0: अरे मीठा मीठा
1: ना,
0: जरा जरा
1: हाँ बड़ा बड़ा,
0: अरे नहीं
1: तो फिर कैसा,
0: दर्द हुआ रंग दर्द हुआ और दर्द पसीना छूट गया, नेक दर्द।

0: एक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।
1: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: अगली पेशकश यहूदी फिल्म से। स्वर दिया है मुकेश ने, शैलेंद्र के लिखे बोल को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म आन का ये गीत। बोल शकील बदायूनी के हैं, संगीत से सजाया है नौशाद ने, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

एक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में तैयार और गीत रचना कमर जलालाबादी, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम था ये दिल किसको दूँ।

0: अभी आप विश्वेश्वर शर्मा के गीत रचना और आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आवारा बाप फिल्म के गीत सुन रहे थे, जिसे गाया था अमित कुमार और आशा भोसले ने। अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजने को है। आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహెర్ట్స్ పై ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం.

0: लगाने का ना रे।
1: चेक चेक, हेलो चेक।
0: अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
2: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: विराम तरवाता चित्र गीतालू कार्यक्रमानिकी तिरिगी स्वागतम।

श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। एक आवश्यक सूचना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा।

सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और

0: മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं.
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है.
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है.
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें.
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें.
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें.
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं.
1: अब हम कर सकते हैं.
2: अब हमें करना होगा.
1: मलेरिया को मिलकर हराना होगा.
2: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं.
1: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी.
3: ഏവർക്കും ഗ്രാമ കേരളം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.

0: ഗ്രാമ കേരളം.
1: പുനർജനിക്കുന്ന പടിപ്പുരകൾ ചിത്രീകരണം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर

एक आवश्यक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम

से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें और योग को जन जन तक पहुँचाने में अपना योगदान दें।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में ताहिरा शाहिद के कुछ गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत होता है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। आप हमें अपने फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर 9474-234-0000 इस पर। कार्यक्रम के अंतर्गत पहली फरमाइश हमें आई है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से। रमेश चंद्र, जय नारायण, तरुण, प्रतीक चौहान, ये श्रोता सुनना चाहते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत।

अगला फरमाइश हमें भेजा है रमेश चंद्र मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी ने, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं लाल बंगला फिल्म का ये गीत।

आयुष मंत्रालय एक आवश्यक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष में कल 14 जून 2025 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएँ, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। जीत फिल्म से अगला फरमाइश हमें आया है असम से हितेंद्र दास का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

एक आवश्यक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़ें, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय

अभियान का हिस्सा बने और योग को जन-जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें फरमाइश आई है PS नहावकर निर्मला विशाल नारायण इंगले सोपान तायड़े आशीष कार। ये श्रोता सुनना चाहते हैं एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं एक मैं और एक तुम फिल्म का, ये जिसकी फरमाइश हमें आई है संतोष सार्थक, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव ने, बघीरा दुर्ग से।

अगली फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से, संदीप ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़, कमल सहानी का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी

0: यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित

0: बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में यह 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है।
3: हो गया है कारोबार के पहले दिन स्पेसएक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और

0: धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के लेग से हवाएं चलेगी, साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ेंगी। जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के लेग से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 16 जून तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3
1: विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 MHz विविध भारती FM श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

एक आवश्यक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

0: अभी आप नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम सुन रहे थे।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

अभी आप नॉनस्टॉप म्यूजिक का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत होता है सैनिक भाइयों को संबोधित हमारा यह कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनिए वर्दी फिल्म से। गायक कलाकार है कुमार सानू, रचनाकार है आनंद बख्शी, संगीत अनु मलिक का।

एक आवश्यक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। एक विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगली पेशकश फिल्म रूप 13 मस्ताना से गीतकार अशद भोपाली, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की अपनी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन इंजी रोकर हमांग इंगिरी तका लमक तेलनी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलो हर्ट्स रमांग एलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनकातलोन ही इंगी हरब मिनकातलोन ही तरन मिने महावत कर चोग नलक एलहो निकुन पनाम ही एम वी कालीघाट चुलिटल नमान तिका निकोबार इतमा चुतरसी नलांगो चिंगेन इत सटकेंद्रो तपहु नलक न्या हेडवाफ ngachawan itnaranai alahango chinget eta fan kenro talaharap na rangka nikubar sekletil andaman and min el talagaran hawan nachu sri vijayapuram kiran garan min ngamchung mv sentinel nachu litter naman kanikubar chawra tarasa kachan nankauri ta campbell bay itnaranai tanai alahango chinget eta sat kenro tabuhi nalaknya headwaf ngachawan itnernai hever alango chinget italuyana hangmirit ne hever kanro talahatam nirang kembelbe sak nankavri kachal tarasa chawra kanikubar talitelanaman anmin altalagaran

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Social networking है क्या आखिर? Social networking दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानी classmates, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए internet आधारित social media कार्यक्रम का उपयोग है. Brand पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए marketers social networking का उपयोग करते हैं. लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है. इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे. आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों. सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक

उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है। कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या-क्या सोशल मीडिया है।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515222।

0: feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.
1: सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहां से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज़्यादातर 18 ईयर्स या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप के सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

इस समय शाम के 4:40 हुए हैं और अब सुनिए आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बाहरों की शाम। शाम 5 तमिल कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम पर चर्चा होगी। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर सुविचार के साथ फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। संध्या 6 किसानवाणी कार्यक्रम में छोलदारी के निवासी श्री धीरेन्द्रनाथ मधु से की गई बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। 6:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम में श्रीमती खतीजा के साथ दी गई भेंटवार्ता का विषय रहेगा मेरे कार्यकाल की भूली बिसरी यादें। 6:45 पर सुनिए झलकी विरासत की बेटी। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है, वह डॉक्टर एन आर कोदाहरन के साथ ली गई भेंटवार्ता का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। रात्रि 8 चित्रपट क्षमा कीजिए रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम। 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में यूएस प्रसाद का सेक्सोफोन वादन होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में, हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति रस का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना, 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा कुमड़े की खेती, 6:10 पर जलियानों का यात्रा कार्यक्रम, 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा रिश्ता शीर्षक पर, 6:40 पर वतन के गीत कार्यक्रम, मौसम की जानकारी व जलियानों का मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण होगा 6:50 पर, 7:15 पर आप सुनेंगे देशरागनी कार्यक्रम, ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम, सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर गायिका होंगी फरीदा खानम, सुबह 9:00 बाल जगत कार्यक्रम में विश्व रक्तदाता दिवस व योग और हम विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे तथा भारत की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पर चर्चा होगी, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन और तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन आप सुनेंगे, सुबह 10:00 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, दिन के 11:00 जनता जंक्शन कार्यक्रम, 11:30 पर आप चंद गजलें सुनेंगे, दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे व विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा होगी, मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा की जाएगी व पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे, दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी ताइरा सईद, घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर चर्चाएं होंगी, दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा गीत लहरी कार्यक्रम के साथ, दोपहर बाद 3:00 सुनिए एल्बम टाइम कार्यक्रम, 3:30 पर आप सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो, शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी जिसमें आप सेंट परखा गांव के सेंट पॉल चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत सुनेंगे, 4:45 पर बाहरों की शाम कार्यक्रम तमिल कार्यक्रम, शाम 5:00 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम, संध्या 6:00 संगीत संगिनी, 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में आप गुजराती लोकगीत सुनेंगे, 7:15 पर मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं, 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, 7:30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स तथा विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा होगी, रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार गौरव गान कार्यक्रम और रात 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे, शाम के 4:45 हुए हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम, तो कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं यार गद्दार फिल्म के गाने के साथ जिसे गाया है कुमार सानू और साथियों ने, बोल कतिल शिफाई के, संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग्य सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकता है। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सूचना समाप्त हुई। और अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गद्दार फिल्म का गाना। रचनाकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं और अब समय है तमिल कार्यक्रम का।

0: लिखाया, शादी कराया, बस अभी आप लोग लाइफ में वो लोग बिजी है, हम अपना भी
1: चलिए, ये भी एक नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण आपने पेश किया है। आपने अपने कार्यकाल की बात की, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में आप सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रही थी, है ना? तो आपके कार्यकाल की मुख्य जिम्मेदारियां क्या थी, क्या काम करते थे आप उस समय?
0: मैं काम कराती थी, लेडीज और जेंट्स को रखे ना, काम कराती, पेड़ गाड़ना, वो करना, ये करना, वो सब करती थी। या कहीं VIP आएगा तो उस लोग का ड्यूटी करना, पुलिस वाला का साथ रहना, कोई भी आओ, कोई भी VIP आओ, उनका साथ हमको रहना है। बिजी रहती थी, बिजी लाइफ, रात को 7 बजे 8 बजे तक का ड्यूटी में रहती थी। हम
1: और उसके काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना होता
0: बच्चों
1: था।
0: को भी देखना बहुत मुश्किल था, बहुत छोटे बच्चे थे ना, बहुत मुश्किल था। VIP ड्यूटी लगाने से ना वहाँ से हिलना नहीं, हिलने से कंप्लेंट होता, वहाँ खड़ा 7 बजे खड़ा करेगा, 11 बजे तक वहाँ खड़े रहो, मतलब बहुत तकलीफ से आगे बढ़ी, बहुत तकलीफ से आगे बढ़ के अभी यहाँ तक पहुँचा। अभी रिटायर हो गया, अभी टाइम पास भी नहीं होता, घर में बैठ के और बोर होता है लाइफ, ज़िंदगी है क्या करेगा, जीना तो है ना, रिटायर होने
1: जी
0: से भी
1: जी
0: जी नहीं है।
1: एक महिला अधिकारी के रूप में आपको कभी क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? कभी मुश्किल आई थी काम करने के दौरान?
0: मुश्किल बहुत आया था।
1: ऐसी कोई बात, ऐसी जो किस्सा जो हमसे साझा करना चाहेंगी आप?
0: ऑफिसर लोग का जो बात सुनना पड़ता है ना, कुछ थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया तो फिर लोगों का बात सुनना, कोई ऑफिसर अच्छा रहेगा, कोई ऑफिसर खराब रहेगा, जब उधर वो नहीं हो गया, इधर ये नहीं हुआ, क्या देखती तुम, क्या सुपरवाइजरिंग करती, धमकी के ऊपर धमकी सुनता था। लेकिन मेरा स्टाफ लोग जो है बहुत अच्छे हैं, हम भी उन लोगों का साथ देता था, वो लोग भी हमको साथ देते थे। लेकिन जब तो जेल के अंदर सब ऑफिस ये VIP लोग आने का टाइम, बहुत कुछ सह ली, बहुत कुछ सह के निकल गई।
1: अब बातें करते हैं आपके अनुसार जो है नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में ऐसी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है उस डिपार्टमेंट की, क्या कैसे काम करते हैं?
0: काम वही है कि हम लोग को काम करवाना, अभी समझो कोई VIP आता है तो नया किस्म का पेड़ लेके आना, वो गाड़ना, वो तरीका से रखना, गमला तरीका से रखना, थोड़ा उधर उधर नहीं होना, उस तरह मतलब नया पेड़ लाएंगे, गाड़ेंगे, फिर वो लेके जाएंगे, 2-3 दिन पहले शुरू, 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाएगा काम कराना करवाना। तो वहाँ में स्टैंड बाई में हमको खड़ा रहना पड़ता था। हम पहले हेडक्वार्टर में थी, फिर वहाँ से दिलेनीपुर में आई, फिर वहाँ से मरीना पार्क गई, गांधी पार्क में करी है, मरीना पार्क में करी है, जेल में करी है, फिर VIP रोड में था, ऑफिस में था, पार्क में भी ऑफिस में भी था। फिर वहाँ से मेरा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, तब हमको थोड़ा आराम मिला था, ड्यूटी में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो फिर वहाँ से फिर अभी मरीना पार्क गई, मरीना पार्क से जेल में भेजा, जेल का सामने एक पार्क है, वो भी देखना, वो भी देखना, चाहे 10 जन हो 15 जन हो, देखना तो देखना ही है, करवाना है तो करवाना ही है, बस उतना ही है, जो बोला वो करना ही है हमको। मरीना पार्क में था, वहाँ से फिर हम यहाँ ऊपर आ गए, जेल को ऊपर आ गई, जेल में आ गई, वहाँ से फिर हमको नीचे जाने का ज़रूरत था, पहले थी वहाँ, वहाँ से हम इधर आ गए, यहीं एक ही जगह का सुपरवाइजर बन के उधरी में करती थी, जेल और सामने जो वीर सावरकर पार्क है ना
1: जी
0: वहाँ में, बस वही दो जगह में था, और
1: चलिए,
0: कोई जगह नहीं।
1: बहुत ही अच्छा काम है ये,
0: हाँ
1: अपने आसपास हरियाली तो होनी चाहिए।
0: हाँ हाँ वहाँ सब था, अच्छा नाम ही था, कोई ऐसा कोई खराब नाम तो नहीं था,
1: आपके सहकर्मियों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, जो आपके साथ काम करते थे
0: बहुत
1: उनका
0: अच्छे,
1: सहयोग कैसा रहा?
0: बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत सपोर्ट देंगे, अरना वो लोग काम करने का टाइम मैं परेशान करेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत धूप रहता है ना तो काम करने का टाइम बोलेगा थोड़ा काम करो, 1 घंटा बैठ जाओ, बाद में जाके काम करो, कोई स्टाफ कभी कुछ बोला नहीं, ना हम किसी को कुछ बोलिए, कभी नहीं।
1: तो पहले दौर के जो काम हुआ करते थे, काम काज हुआ करते थे, और आजकल की जो कार्य प्रणाली है, जो काम करते हैं, करने का तरीका है, उसमें आप क्या अंतर देखती हैं?
0: बहुत तकलीफ था जब शुरू शुरू में ना, बहुत तकलीफ, बोलने से बहुत ज़्यादा ही तकलीफ था, ऐसा तकलीफ है कि ऐसा सोचे कि रो देगा, नहीं तो घर नौकरी छोड़ के घर चले जाएगा, उतना परेशान करे, परेशान नहीं काम करवाते थे, पत्थर उठाओ, सीमेंट उठाओ, वो करो, ये करो, कढ़ाई उठाओ, सब कुछ, नहीं करेगा तो जाओ अपना घर जाओ, ये सवाल पहले, फिर अगर करना ही मजबूरी है अपने बच्चों लोग के लिए तो करना ही पड़ता ना, कि उसका बाप नहीं है तो हमको करना ही है, वो टाइम से बहुत लाख लाख शुक्रिया है कि अब भी आराम होगी, अभी कोई परेशान, बाबू बहुत अच्छे हैं, कभी परेशान नहीं करा, बहुत अच्छा इंसान था मेरा ऑफिसर भी।
1: अभी रिटायरमेंट के बाद आप अपना जो है समय का सदुपयोग कैसे करती
0: बहुत परेशानी में अभी
1: है?
0: सुबह 6 बजे जाती, 2 बजे आती थी, अभी घर में बैठ के बोर होता है, इतना बोर होता है कि कितना काम हो, जो जो काम है कर लेती, बहन का साथ में वो करेगा, रोटी बनाएगी तो हम सेक लेती, फिर बर्तन माँज लेती।

0: बस वही करते रहती। बाहर वो उतना जाती नहीं, बहुत कम जाती है। अभी जाएंगे सोच के बैठे, लेकिन तो बारिश छोड़ता भी नहीं, देखता क्या करना करके। बहुत परेशानी है फिलहाल।
1: आपके आंगन में किचन गार्डनिंग वगैरह नहीं है, उनका शौक
0: है
1: रखते हैं?
0: हम नहीं रखती, लाके देगी छोटी वाली का शौक है, हम
1: अच्छा
0: नहीं करेगी गार्डन, हम नहीं करती, वो करेगी। हमको
1: अच्छा
0: शौक नहीं, क्यों जिंदगी से तो गार्डन में रह रह के ना अच्छा दिल नहीं
1: मन
0: करता
1: उग गया।
0: मन।
1: चलिए, वो भी एक बात होती है कि जिंदगी भर जिस काम में हम लगे रहे उससे अब थोड़ा सा आराम मिल रहा है,
0: वही वही
1: इसीलिए आपको किचन गार्डनिंग का शौक नहीं रहा।
0: शौक नहीं है हमको। वहाँ भी हम नहीं गाड़ती थी, वहाँ भी मेरा जो स्टाफ लोग मेरे साथ है वो लोग को बोल के देगा तो वो लोग गाड़ेंगे, जेंट्स और लेडीज मिल के गाड़ते थे। हम उस समय खाली बताएंगे ये गाड़ो वो गाड़ो करके, बस उतने ही। हाँ शुरू शुरू में सब कुछ करती थी, फर्स्ट में जब भर्ती हुआ था ना तब तो सब कुछ करना पड़ता था, करवाते थे, मजबूरी में तो करने ही पड़ते।
1: जी, और जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य और कुशल जीवन के लिए आप क्या सलाह देना चाहती हैं?
0: यही सलाह देंगे, सब खुश रहो, सब ऊपर वाला से दुआ मांगो, सब अच्छे से घूमो पियो खाओ पियो मस्त रहो।
1: और समाज को बुजुर्गों के प्रति क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो हैं बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हैं, ज्यादातर समय व्यतीत नहीं करते हैं, जिस कारण उनको अकेलापन भी महसूस होता है, तो ऐसा क्या करें?
0: कोई भी बच्चा हो, कोई भी बहू हो, कोई भी बेटी हो, बुजुर्ग लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्यों कल को वो भी तो बुजुर्ग होगा ना। तो उसके लिए बच्चे जो है, बेटा हो बहू हो बेटी हो कोई भी हो, जो भी बुजुर्ग है, माँ हो या बाप हो, उनका साथ मरते दम तक देना, उनका सेवा करना, वही सबसे बड़ा पुण्य
1: जी, बिल्कुल सही बात आपने
0: है।
1: कही है। और आपके जीवन का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसने आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया?
0: ऊपर वाला के ये और किसी का सपोर्ट नहीं है।
1: रेडियो के कार्यक्रम सुनती हैं आप?
0: हाँ सुनती
1: जी, कैसे लगते हैं
0: अच्छा
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम के
0: लगता,
1: कार्यक्रम?
0: वही साल में सुनती ना,
1: जी
0: रेडियो
1: जी
0: वेडियो तो नहीं है उसमें सुनता है, फिर टीवी में, टीवी तो खोलती नहीं, वही सुनता, अच्छा रहता, सुनते रहती।
1: जी और गीत संगीत का शौक रखती है, गाने वगैरह सुनती हैं?
0: वो
1: नहीं।
0: शौक नहीं, वो बहन को शौक है, हमको नहीं है। गाना बुना का शौक निकाल, यूट्यूब भी देखती, बस टाइम तो पास होना है ना, वही करती और कुछ नहीं।
1: योग वगैरह करती हैं, क्योंकि अभी 21 जून आने वाला है, तो 21 जून को तो सब योग दिवस मनाएंगे,
0: हाँ योग
1: तो
0: दिवस,
1: स्वस्थ रहने के लिए तो योग करना बहुत जरूरी है।
0: योग दिवस आने का टाइम में हम छुट्टी करके घर में बैठ जाती, क्यों हम जाती नहीं, क्यों बैठना पड़ता है ना, हम बैठ नहीं सकती नीचे, मेरा पैर एक्सीडेंट होके टूटा हुआ है ना, इसलिए घर में तो नहीं लगता मैडम। हम लोग है ना घर का जो सीढ़ी है ना 47 सीढ़ी है, वो 2 बार उतरेगा चढ़ेगा, हम लोग का योग भी हो जाएगा एक्सरसाइज भी हो जाएगा बराबर।
1: चलिए, वो भी एक अच्छा व्यायाम है ना, तो चलते फिरते भी रहना चाहिए। कभी शाम को टहलने वगैरह जाते हैं?
0: नहीं किसी का सपोर्ट जरूरत है इसलिए नहीं जाती, मतलब ना अप एंड डाउन जगह में हम गिर जाती, तो पैर एक मेरा छोटा है तो हमको मुश्किल होता चलने के लिए, इसलिए हम कहीं बहुत कम जाती।
1: और अंत में आप अपने अनुभवों के आधार पर हमारे युवाओं को, समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: सब खुश रहो, सदा सुहागन रहो, बच्चे सब खुश रहो, बुजुर्ग लोग भी खुश रहो, हम भी खुश रहेगी, मेरे बच्चे भी खुश रहो, आप लोग भी खुश रहो, दुनिया का सारा बुजुर्ग को सबको ही देखना, उनका सेवा करना, उनसे आशीर्वाद लेना।
1: जी, यही सबसे बड़ी बात
0: हाँ
1: है ना।
0: वही है दुनिया में सब कुछ बड़ा दौलत।
1: बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सब पर बना
0: हाँ
1: रहे, यही
0: हाँ
1: सबसे
0: यही
1: बड़ी बात
0: सबसे
1: है
0: बड़ा,
1: ना।
0: वो उसका एक आशीर्वाद मिल गया ना, हम लोग वही सब कुछ है।
1: और अगर हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं, वरिष्ठ के साथ रहते हैं, तो हमें अच्छे अच्छे संस्कार भी मिलते हैं, उनसे
0: हाँ
1: सीखने को
0: मिलते हैं।
1: मिलता है।
0: हाँ देखो हम जब छोटी थी मेरी अम्मा पागल थी, मेरी अम्मा का से कुछ हम लोग को मदद मिला नहीं, हम बहुत छोटी थी और तुमसे अम्मा पागल थी, जब हमको अक्ल आते आते मेरी अम्मा का डेथ हो गया, तो हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं, फिर हमेशा हम सोचे कि एक माँ बाप रहने से इतना खुश है घर में, हम लोग तो दोनों नहीं देखे, इसलिए हम मेरा ननद लोग जो है एज वाले हैं उनको देखती थी, मेलेन में उनको देखती थी, जाती माँ जाती हम जाएगी, वो लोग को जो मांगता बोलने से लेके देगी, वो लोग का सेवा कर, वो लोग कुछ भी बोलो हम गुस्सा नहीं होता, उम्र वाले हैं ना तो उनका सेवा करेंगे सब कुछ करें, हमको उतना औकात नहीं था, पेमेंट मेरा वो टाइम 500 रुपया था औकात, फिर भी हम 500 रुपये से भी वो लोग को मदद करी है, बहुत करी है, लेकिन अभी कोई नहीं है, अभी खाली देवर बच्चा है, लेकिन मदद करी है, लेकिन हम बोलते अभी का बच्चों लोग भी उस तरह करने से कितना अच्छा है कि नहीं, कोई भी बच्चा हो अपना माँ बाप को देखो, सास ससुर को देखो, उम्र वालों को देखो, उम्र वाले से दुआ मांगो, उस लोग से आशीर्वाद लो, यही तो दुनिया में सबसे बड़ा दौलत है ना।
1: जी, बिल्कुल। खदीजा जी, आपने अपने बहुमूल्य अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए, इसके
0: जी
1: लिए आपका हार्दिक

0: धन्यवाद। आपके अनुभव निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को प्रेरित करते रहेंगे। आप
1: थैंक
0: स्टूडियो में आई, अपना कीमती समय हमें दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: यू, थैंक यू।
2: बीती यादें।
3: श्रोताओं, बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें में अभी आप सुन रहे थे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड श्रीमती खदीजा के साथ ली गई भेंटवार्ता। विषय था मेरे कार्यकाल की भूली बिसरी यादें। भेंट करता थी सोनिया व प्रस्तुत करता थी जयशीला।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए श्री गोपाल शर्मा की लिखी झलकी, विरासत की बेटी।
1: हाय हाय, ये क्या हो रहा है? सबके सब क्यों शोर मचा रहे हो?
2: मिल गया माँ।
1: क्या मिल गया?
3: अरे बच्चों की माँ, बहुत कुछ मिल गया।
1: कोई बताएगा भी आखिर क्या मिल गया?
4: मैं बताऊँ? कोड़ा।
1: कोड़ा? मजाक कर रही है मुझसे?
4: बिल्कुल नहीं। कोड़ा मिल गया है, सिर्फ चीन लगाम कोड़ा खोजा बाकी है।
3: अरे चुप रह लड़की, ज्यादा बढ़कर बातें मत किया कर, नहीं तो।
1: मगर ये कोड़ा है कहाँ?
2: पापा के पेट में।
1: अरे बताओ अभी।
2: पापा के पेट में खिलखिली हो रही है।
1: अरे ये तो कोई धर के चकोर पट्टी मालूम होती है।
3: जी हाँ, ये पट्टी नहीं पट्टा है, पट्टा हमारी किस्मत का बीजक है, कुंजी है। अरे संभाल कर उठाओ और आके फाड़ कर देखो।
1: तुम्हारी किस्मत पर तो प्लेटिनम का ताला लगा है।
2: इसे इसे इसे देखो तो माँ, इस पर कुछ खुदा हुआ है।
1: अरे हाँ, ये तो किसी गड़ुए धन का बीजक मालूम होता है।
3: इन मामलों में तुम्हारी अकल एकदम तेज चलने लगती है। अरे ये है ताम्र पत्र, याद है तुम्हारे ससुर जी क्या कहा करते थे?
1: अरे याद है, बगीचे की जमीन में हमारी किस्मत गड़ी है, यही ना हुआ कुछ हासिल?
3: हे भगवान, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं बता सकते।
1: देखो जी, ये घिसी पिटी मनुष्य कहावते हमें ना सुनाया करो, जमाना बदल चुका है।
3: ओहो भाई, भूल गया, मगर हर एक चीज का शायद एक वक्त मुकर्रर होता है।
1: 30 साल तो मेरे देखते देखते गुजर गए, वो वक्त का वक्त अभी तक तो आया नहीं।
4: पापा का ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है।
2: मम्मी, ये ताम्र पत्र है, इस पर कुछ लिखावट है, अगर इसे पढ़ लिया जाए तो उस पेटी का ठीक पता लगाया जा सकता है।
1: किस पेटी का?
3: खबरदार, जो इस मामले में किसी से भी जरा भी बात की।
1: अरे जाओ, बात तो तुम्हारे पेट पे नहीं पसती और हमें धमका रहे हो।
3: अरे मैं किसे बताऊंगा, क्या अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लूंगा? मुझे बाला बाला ही कुछ काम करना है। अच्छा बच्चों, तुम बगीचे में अपना काम जारी रखो, चलो।
2: नहीं, कुछ मंगाइए, कुछ मीठा।
4: रसगुल्ले।
1: हाँ, रसगुल्ले।
3: हाँ, जरूर जरूर, लेकिन अभी अबाउट टर्न। डबल मार्क।
4: लेफ्ट राइट, लेफ्ट
3: अरे सुनती हो, हमारे दिन अब फिरे।
1: हाँ दिन फिरे हैं सर, तो ठीक है, कहीं सिर ना फिर जाए।
3: अब तुम्हें गहनों से लाद दूंगा ये झोपड़ी। अरे इसकी जगह एक होगी खासी कोठी, चमक चमाता हुआ फर्नीचर होगा, एयर कंडीशनर होगा, रंगीन टीवी VCR होगा, और फिर रेखा के लिए एक अच्छा सफर भी मिल जाएगा।
1: बस बस बस बस, करने लगे ना शेख चिल्ली जैसी बातें। अगर कोई पेटी खोद ले गया हो तो है? और तांबे का ये पत्र बेकार समझ कर छोड़ गया हो?
3: तुम हमेशा उल्टा सोचती हो, ना मालूम किस नक्षत्र में पैदा हुई थी। अच्छा सोचना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं।
1: सुनो जी, बुरा पहले सोचना चाहिए, जिससे दिमाग ठिकाने है।
3: तुम चुप रहो जी, पुरानी लिखावटों के जानकार को दिखाना होगा, एक कहानी गढ़नी होगी, आदमी भी भरोसे का चाहिए।
5: अरे भाई है क्या घर पर?
3: ओहो, लो एन वक्त पर कौन आ मरा।
1: अरे कैसा बोलते हो जी, दुर्गा दत्त है, मेरा भाई।
3: तो अच्छी तरह

0: समझ लो मैं घर पर बिल्कुल नहीं हूँ।
1: अरे भाई कहाँ है सब लोग?
2: आओ आओ दुर्गा सीधे चले आओ।
3: अरे क्या बात है जी, ये सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां कैसे उड़ रही?
2: आधा से बाज नहीं आता, आते शुरू कर दे शरारत।
4: नमस्ते जीजी।
2: ओ वीना तो भी साथ आया है। अरे अरे खुश हो वीना, दूध लाओ।
3: बस बस बस बस आगे बन। क्या बात है जिया जी कहाँ गए? जूते उनके जूते उनकी मौजूदगी का सबूत दे चुके हैं जी जी।
2: तू जासूस कब से बन गया रे, शरीर कहीं का।
1: अरे मार्जी जी, अरे किस खंडक में छुपे हो भाई?
2: अरे तू इधर बैठ, वो होंगे तो यही आ जाएंगे।
3: क्या कहा होंगे? और ये जमीन पर मिट्टी कैसी पड़ी हुई है?
4: इस तरह खोजबीन क्यों कर रहे हो? छुट्टी का दिन है, जीजी ने सोचा होगा आराम से झाड़ बुहा लेंगे।
2: एक साथ सवालों की छड़ी लगाया जा रहा है, बगीचे में पानी दे रहे हैं, अभी आ जाएंगे।
3: रेखा, सुरेश, अनिल, वीरा, जरा जाके बुलाओ तो लाओ।
4: जी।
2: अरे इतनी जल्दी क्या है, तेरा बचपन अभी तक गया नहीं।
3: अरे जी जी, बच्चों के बगैर ये घर सूना से लग रहा है। अरे जाओ वीरा, तुम जाओ
4: जी।
3: हाँ तो जीजा जी किस धुन में फंसे हैं आजकल, नजर नहीं आ रहे जनाब।
2: बहुत काम आ पड़ा है उन पर।
3: अरे जी जी, काम तो सभी पर है, तुम क्या समझते हो मैं बेकार हूँ? अरे अगर कोई खास काम हो तो बात दूसरी, इधर कुछ अरसे से तुम उससे कुछ छुपाने लगी हो।
2: अरे नहीं रे, तुझसे किस बात का पर्दा?
3: तो फिर घुटती क्यों हो? आउट, कह डालो एकदम।
2: कहने बताने को है ही क्या?
3: है, जरूर है, मैंने सुन लिया है। जी जी
4: जी जी, रसोई का दरवाजा तो बंद है।
3: देखा मैंने कहा ना, जरूर कोई गोलमाल है।
4: सांकल लगी होगी?
2: सांकल तो भीतर से लगी है।
4: भीतर से?
3: जीजा जी होंगे। अरे निकल आई है महाशी, अकेले अकेले लड्डू खाना अच्छा नहीं है। हाँ। मैं देखता हूँ जरा।
4: दुर्गा तूने मेरी कसम, अगर तू उधर गया
3: तो बताओ जीजी मामला क्या है। अरे कैसी बात है जीजी, क्या मुझ पर से तुम्हारा विश्वास हट गया है? अगर किसी परेशानी में है जीजा जी तो मुझसे ज्यादा भरोसे का और मददगार उन्हें कौन मिलेगा है? बोलो।
4: सुनी जी, मैं तो दस्तक देते देते हार गई। तुम यहाँ बैठ जाओ। देख दुर्गा, परेशानी कोई नहीं है, सरा ऐसी कुछ बात है जिसे उन्होंने किसी और से कहने पर मना कर दिया।
3: अच्छा, देखा वीणा, अब हम पराए हो गए हैं।
4: नहीं रे, तू तो जिद ही पकड़ लेता है। कुछ साल पहले उन्हें जो फितूर सवार हुआ था ना, हे भगवान।
3: अरे अरे भगवान को क्यों याद कर रही हो जी, जल्दी बोल डालो वरना पेट में दर्द होने लगेगा।
4: नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, हम किसी से ना कहेंगे जीजी।
3: तुम बात को पचा नहीं सकोगी।
4: मैंने तुम्हारे जीजा जी को वचन दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
3: मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह घुटोगी तो बीमार पड़ जाओगी।
4: बड़े धर्म संकट में डाल दिया तुम लोगों ने। खैर बात यह है, तुझे याद है ना दुर्गा, कुछ साल पहले उन्हें एक फितूर सवार हुआ था।
3: हाँ याद आया, एकदम मालदार बनने की।
4: उन बेचारों को क्यों दोष दिया जाए, आज भारत के हर आदमी पर यही भूत सवार है।
3: तो क्या फिर पिछवाड़े बगीचे की खुदाई शुरू हो गई? अरे मैं तो लाख बार बता चुका हूँ कि इनके बाप दादे अमीर थे कब, जो अशर्फियां गाड़ के स्वर्ग सिधार जाते।
4: पर ये माने तब ना, आज सुबह जीजा जी तो बाहर हैं।
3: तो फिर रसोई घर में कौन बंद है?
5: अच्छा तो आप यहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं दुर्गा दत्त जी, आ जाइए मौलवी साहब, आ जाइए। बच्चों की माँ तुम लोग जरा भीतर तो चले जाओ, मैं पड़ोस वाले मौलवी साहब को लाया हूँ।
4: हम दरवाजे की ओर से सब सुनेंगे। चलो वीरा
2: जी चलिए।
5: आप हमारे सलार जंग हैं मौलवी साहब।
6: वल्लाह बढ़िया हस्ती हैं, खुदा सलामत रखे, बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर।
7: जी मुझे भी हुई मौलवी साहब।
5: बहुत पहुंचे हुए आलिम फाजिल हैं मौलवी साहब, दूर दूर तक इनका नाम रोशन है।
6: अजी अजी क्यों आसमान पर चढ़ाई दे रही है इस नाचीज को साहब, मैं तो एक अदना सा मुदर्रिस हूं।
7: क्या जनाब?
6: हाँ तो खा, निकालो वो अपना ताम्र पत्थर।
5: हाँ लीजिए।
6: हाँ
7: ये क्या है जी भाई?
5: अलादीन का चराग, मेरी सोई किस्मत को जगाने वाला जलजला।
7: अच्छा
5: बस तुम सब्र से चुपचाप देखते जाओ
7: जी।
5: हाँ तो मौलवी साहब, खत तो फारसी है ना?
6: बिल्कुल मियां, बिल्कुल फारसी की है, हालांकि खते शिकस्ता मतलब की घसीटा है, पर मैं पढ़ लूंगा।
5: तो पढ़िए ना, क्या लिखा है?
6: सुनो खां, इसमें लिखा है, ठहरिए ठहरिए यार तुम, ये चंद्रसेन क्या आपके वालिद थे?
5: जी नहीं, परदादा थे
6: जी।
5: सुनते हैं 1957 में उन्होंने बड़ी शोहरत और इज्जत पाई थी।
3: जरूर पाई होगी जिया जी, आप जैसे महापुरुष

0: कि दादाजी जो थे, अरे उनको तो बड़ा होना ही चाहिए।
1: दुर्गादत्त,
2: दुरुस्त फरमाया आपने। हाँ, आपके मरहूम परदादा मियाँ ने इस पत्थर से 3 फुट नीचे एक ऐसी पेटी दफन की थी
3: जी,
2: जिसे हासिल कर आगे आने वाली पीढ़ी शोहरत और दौलत दोनों हासिल कर सकती है।
1: मौलवी साहब, दौलत तो साफ साफ लिखा है ना।
0: ये तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं मौलवी साहब, क्यों जीजा जी, मगर इस पेटी का नामो निशान आज तक नहीं मिला है।
2: हमारा जरा सब्र से काम लीजिए खान दुर्गा प्रसाद।
0: दुर्गा दत्त,
2: माफ कीजिए दुर्गा दत्त साहब, आज पत्थर मिला है, कल पेटी मिल जाएगी।
1: वो कैसे?
2: मैंने कह दिया जरूर मिलेगी।
1: आप क्या ज्योतिष वगैरह भी जानते हैं?
2: नहीं ना, आज का दिन और सब्र से गुजारिए। कल मैं अपने साथ एक ऐसे शख्स को लाऊंगा जिसे जमीन के तह शीशे की तरी नजर आती है। अच्छा मैं चला। अरे हाँ याद आया जी, उसे पेशगी देनी होगी।
1: पेशगी? दुर्गा दत्त, क्या कहना है तुम्हारा? आज महीने की 26 तारीख है।
0: अरे इसमें क्या परेशानी है, पेशगी मौलवी साहब के दौलत खाने में शाम तक पहुंचा दी जाएगी।
2: अच्छा, बहुत समझदार मालूम होते हो दुर्गा प्रसाद।
1: दुर्गा दत्त
0: जी,
1: अच्छा चल दिया हूँ।
0: आदाब जनाब।
1: अच्छी बात।
4: अरे जल्दी
1: बताओ, जल्दी बताओ कहाँ है?
4: मैंने जो ही गेटी मारी कि आवाज हुई टन।
0: अरे नहीं वीणा, तुम देखो ना, पेटी में तो कुछ खटखट खटखट बोल रहा है, और देखो कितनी हल्की है ये।
4: अरे हाँ, तुम भी देखो जीजी।
0: हाँ देखो देखो,
4: ये लोग ठीक ही तो कह रहे हैं जी।
1: अच्छा इधर लाओ, इधर लाओ, मैं इसका ताला तोड़ता हूँ। अब इसका ढक्कन, ये क्या? अरे मैं लुट गया,
0: ये क्या हो गया? बता रहे
4: हैं देखते दुर्गा पेटी में क्या है।
0: लो भाई लो, खूब आगे फाड़ फाड़ कर देख लो। अलादीन को जादुई चिराग मिला था तो जीजा जी को जादुई कटार मिली। सही बात। लो बच्चों, इसे घिस कर साफ करो, अभी एक जिन प्रकट होगा और तुम्हारे पापा की सारी तमन्नाएं हसरतें पूरी कर देगा, और यहाँ तक कि अगर जीजा जी चाहेंगे तो अशर्फियों का एक गोदाम भी खड़ा कर
4: देगा।
0: नगर दादा की है ये ले, एक चूने की डिब्बी की तरह पीतल की पुंगी, सड़े काट के अंदर से हाथ आई है, खोल कर देखता हूँ। चाकू से खुलेगी, इसके अंदर तो कोई, अरे कागज है इसका।
1: अरे कोई चिट्ठी होगी।
0: अरे वही फिर पारसी।
1: अरे भाग अनिल भाग, बेटे मौली साहब को पकड़ना फौरन।
4: अच्छा बाबा भाग।
0: अरे आइए आइए, तशरीफ ले आइए मौलाना साहब, अंदर आ जाइए।
5: अब पहले खातूनों को पर्दा तो कराइए।
1: आप चले आइए।
4: हाँ चले आइए, चले आइए,
0: आइए जनाब, आइए साहब।
1: पहले एक कागज तो खोल कर पढ़ लीजिए। सही सही।
2: अमा इसमें लिखा है,
0: बड़ी रंग
2: 57 के बलवे के वक्त लूटपाट से बचाने के लिए घर के जेवरात और मोहरे इस पेटी में छुपा कर रख दी गई थी। अठहरो आगे भी सुनो, इसमें आगे लिखा है, जब हमने इस कटार से 7 फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया तो इसकी तारीखी अहमियत के ख्याल से इसे पेटी में रख दिया, और इसमें रखा हुआ माल जंग में शहीद लोगों की बेवाओं को बांट दिया।
0: अरे कटार तो छोड़ गए जीजा जी
1: खुदकुशी करने के लिए।
2: अम्मा मायूस मत होइए खां, मरहूम दादा साहब ने पैसे को हाथ का मैल समझकर बांट दिया था।
0: अरे आदमी को बड़ी मजबूरियों में जीना पड़ता है जीजा जी, पैसा बर्बाद करो में काम आया, अच्छा ही हुआ। शायद आपके लिए ईश्वर का यही विधान था।
4: हाँ ठीक कहते दुर्गा भाई, कटार और कागज दुर्गा को सौंप दो, वो इसे इसकी वारदात के साथ सही जगह पहुँचा देगा।
1: अरे यार पैसे नहीं मिले तो कम से कम अखबार में ये स्टोरी छपवा देना हमारी तस्वीर के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री गोपाल शर्मा की लिखी झलकी, विरासत की बेटी। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकता है। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आज संध्या 7 बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत संध्या 7 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है।

कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा कुमड़े की खेती। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा रिश्ता शीर्षक पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर गायिका होंगी फरीदा खानम। सुबह 9:00

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन और तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन आप सुनेंगे, और सुबह 10 बजे सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जनता जंक्शन। तो श्रोताओं, अभी आप आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय की ओर से कल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास के तहत योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार निकोबार में मैराथन का आयोजन किया गया और अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन की ओर से कल चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बेबी। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास और योग संगम गतिविधियों में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखा गया है, जो सभी आयु वर्गों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने और स्वस्थ व सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इस सिलसिले में आयुष मंत्रालय देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में मंत्रालय कल सुबह 6:15 से 7:35 तक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऑनलाइन योग सत्र में एक साथ भाग लेने वाले लोगों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड बनाना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर एक मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने योग संगम पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल 21 जून को देश भर में एक साथ होने वाले योग संगम में सभी संगठनों, संस्थानों, सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, प्रमुख योग संस्थानों और सामुदायिक समूहों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी

पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यापार संचालकों को तत्काल प्रभाव से मेटल की पिन, स्टेपल पिन, वायर और अन्य इसी प्रकार की अन्य चीज़ों का इस्तेमाल खाने पीने के उत्पादों को पैक करने और सुरक्षित रखने के लिए न करने का निर्देश दिया है। निर्देश का पालन न करने वालों पर प्रावधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, मैराथन और चयन ट्रायल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज कल्याण निदेशालय की एकीकृत नशा मुक्ति केंद्र और ICDS जनजातीय परियोजना निकोबार ने 8 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना, युवाओं और समुदाय में मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना था। जंगली शराब को कहे ना, जीवन चुने, स्वतंत्रता चुने विषय के साथ आयोजित इस मैराथन को जिला उपायुक्त अमित काले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर निकोबार जिला पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर सहित सहायक आयुक्त डॉ. नवीन कुमार, जनजातीय परिषदों के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। परियोजना समन्वयक तनीश इंदवार ने अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मैराथन का आयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग श्रेणियों में किया गया था। सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार और ट्रॉफियां प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक ने एक नशा मुक्त भविष्य के निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं से स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाली रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। निकोबार जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के नशा मुक्त निकोबार और नशा मुक्त भारत पर लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग, जागरूकता सत्र, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियां चलाई जाएंगी। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अंडमान निकोबार प्रशासन टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय गहन अभियान को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। यह अभियान तपेदिक को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। अभियान के मुख्य उद्देश्य स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के सभी छिपे मामलों की पहचान करना, व्यक्तिगत मरीज देखभाल, पोषण संबंधी सहायता, अन्य बीमारियों का प्रबंधन, नियमित फॉलोअप और टीबी डेथ ऑडिट के माध्यम से मृत्यु दर को कम करना, नए मामलों की रोकथाम और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। अभियान के दौरान टीबी स्क्रीनिंग और आयुष्मान आरोग्य शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक द्वीप समूह में कुल 699 शिविर लगाए गए, जिसमें 29,954 लोगों की जांच की गई। निक्षय मित्र के लिए 7,872 नए नामांकन किए गए। प्रशासन ने सभी नागरिकों से टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। साथ ही 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों, मधुमेह रोगी, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, टीबी रोगियों के करीबी संपर्क में रहने वाले या जिन्हें पिछले 5 वर्षों में टीबी हुई हो, उनसे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराने को कहा गया है। अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन की ओर से कल चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। यह ट्रायल सीपीघाट स्थित खेलो इंडिया जल क्रीड़ा परिसर में सुबह 6 बजे से शुरू होगा। ट्रायल में 24 से 27 जून तक पुणे में आयोजित होने वाले U23 राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रोइंग टीम का चयन किया जाएगा। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने स्वराज द्वीप के नीम ओरीव से जेटी मार्ग पर पारदर्शी कयाकिंग गतिविधियों के संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय अंडमान

0: निकोबार द्वीप समूह जल क्रीड़ा दिशा निर्देश 2015 के प्रावधानों के तहत की गई जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रहे जेटी लाइट हाउस कायाकिंग मार्ग पर भीड़ भाड़ को कम करना, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को नए अवसर प्रदान करना और साथ ही गतिविधियों की प्रभावी निगरानी और विनियमन सुनिश्चित करना है। पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्तावित क्षेत्र में केवल पारदर्शी कयाक के संचालन की ही अनुमति होगी। इच्छुक कयाक संचालक केंद्र और पर्यटन हितधारक अपने आवेदन निदेशालय के साहसिक जल क्रीड़ा प्रभाग में जमा कर सकते हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में अगले दो दिनों तक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 17 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय की ओर से कल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास के तहत योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार निकोबार में मैराथन का आयोजन किया गया और अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन की ओर से कल चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। लॉन्ग आइलैंड में 4, श्री विजयपुरम में 3, नानकौरी में 2, मायाबंदर में 2, कार निकोबार और वायुसेना केंद्र कार निकोबार में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जनसेवाओं को कल सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ भारी वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि तेज हवा के चलते वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 जून तक समुद्र में न जाए। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होगी। तो ये थी मौसम की जानकारी और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए 15 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 16 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। सिंधु जहाज कल 14 जून को सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान के लिए श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार के लिए 19 जून को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा 20 जून को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। सिंधु जलिया नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा के लिए 16 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 18 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल रविवार 14 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलियान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजदीप जाने के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा व कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजदीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजदीप जाने के लिए कल रविवार 14 जून को दिन के 11 बजकर

30 मिनट पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप के लिए कल 14 जून को दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा स्वराजद्वीप जाने के लिए कल 14 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा परसों 15 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, सबसे पहले सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में अंश फिल्म का गाना बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-3157-0008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे कल 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब लीजिए सुनिए कुवारा फिल्म का गाना। सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वरों में, रचनाकार समीर, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए, सुनिए युववाणी कार्यक्रम।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों, यह विचार हमें आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। असली हार तब होती है जब हम अंदर से हार मान लेते हैं और या सोच लेते हैं कि या मेरे बस का नहीं है। अपनी सोच को हमेशा मजबूत रखिए। अगर मन में जीतने का जज्बा कायम है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आज 13 जून है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। एल्बिनिज्म एक दुर्लभ और गैर संक्रमण अनुवांशिक स्थिति जेनेटिक कंडीशन है। इसमें शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट का निर्माण नहीं होता है, जिससे त्वचा, बाल और आंखों का रंग पूरी तरह सफेद या बहुत हल्का हो जाता है। मेलानिन की कमी के कारण इन लोगों को धूप से त्वचा के कैंसर और कमजोर दृष्टि का भारी खतरा रहता है। शारीरिक चुनौतियों के अलावा एल्बिनिज्म से पीड़ित लोग समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और हिंसा का भी सामना करते हैं। कई क्षेत्रों में आज भी उन्हें लेकर गलत धारणाएं फैली हुई हैं। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्ति भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्हें सहानुभूति की नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और समान अवसरों की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा समावेशी समाज का निर्माण करना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी विशिष्टता के साथ गर्व से जी सके। दोस्तों, रक्तदान को भारतीय समाज और चिकित्सा विज्ञान में महादान कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने आज आसमान छू लिया है, लेकिन अब तक प्रयोगशाला में कृत्रिम खून नहीं बना पाया है। किसी भी बीमारी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाने के लिए केवल दूसरे इंसान का खून ही काम आ सकता है। रक्तदान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह सीधे तौर पर किसी की जान बचाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए, इसी संदर्भ में हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर NR कोदंडराम से ली गई भेंट वार्ता।

0: श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। श्रोताओं, विश्व रक्तदाता दिवस है, इस मौके पर हमने आमंत्रित किया है जीबी पंत अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ब्लड बैंक डॉक्टर एनआर कोदंडराम को। डॉक्टर कोदंडराम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो ये बताइएगा कि विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, क्यों मनाया जाता है ये?
1: ये ब्लड डोनर डे 14 जून इसलिए मनाया जाता है कि सारा विश्व में ये फैलाया जाए कि सारे

0: वो इंक्रीज़ हुआ है, उसके लिए अल्टरनेट ब्लड देना पड़ेगा, इसलिए ब्लड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहा है और डोनर्स का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। और डोनर्स ऐसा रहना चाहिए कि उनका ब्लड सेफ़ रहना। सेफ़ रहने का मतलब ये है कि उनको डिजीज़ कुछ नहीं रहना, जैसे बेसिक डिजीज़ेस है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट है HIV नेगेटिव रहना है।
1: जी, कहने का मतलब यह है कि एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हों, आगे आएं,
0: आगे आए
1: अपनी इच्छा से रक्तदान करें
0: रक्तदान
1: और
0: करें,
1: दूसरों के जीवन को
0: जीवन
1: बचाएं।
0: को बचाएं।
1: डॉक्टर साहब, आपने जांच की बात की कि खून लेने से पहले जांच होती है, क्या क्या जांच होती है?
0: क्लोन लेने के पहले ओनली काउंसलिंग होता है,
1: जी
0: जिसमें उन लोग को क्वेश्चनर दिया जाता है जो डोनेट करते हैं, उसमें सारा डिटेल्स वो लोग खुद मार्क करेगा। काउंसलिंग है, वॉलेंट्री है, सो वो डिक्लेयर करेंगे कि कुछ बीमारी है, वो बेसिस पे अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर एडवाइस देते हैं क्या ट्रीटमेंट लेना। अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं किससे जा कंसल्ट करना है और क्या ट्रीटमेंट लेना है। और HIV पॉजिटिव है तो वो कम्प्लीटली सीक्रेट रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। कॉल बैक करते हैं वो पेशेंट को, उनको काउंसिल करते हैं और वापस अपना अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी वाम बीच के उनको रीटेस्ट किया जाता है, अगर पॉजिटिव फिर मिल गया तो उनको ट्रीटमेंट में रखा जाता है।
1: जी
0: और ऐसा ब्लड जो भी ये चार डिजीज का है मिला तो वो ब्लड रिजेक्ट कर देते हैं, हम लोग डोनेशन
1: नहीं,
0: में नहीं लेते हैं।
1: तो बाकी जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट कर
0: जो
1: सकते हैं।
0: सारा हेल्थी इंडिविजुअल 15 से लेके 60 ईयर्स तक फ्रीली दे सकते हैं। एक ही एक है, उनका वेट 45 kg का ऊपर रहना है और ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल रहना 12.5। बेसिक टेस्ट जो है हीमोग्लोबिन, एज
1: जी
0: एंड उन लोग का वेट
1: वेट,
0: 45, ये
1: जी
0: तीन चीज़ देख के दे कैन ईजिली डोनेट।
1: कितना ब्लड लेते हैं आप एक समय में?
0: नॉर्मली 350 to 450 ml,
1: और जिसके ज़्यादा खून हो तो?
0: को नहीं लिमिट है, 33 मैक्सिमम 450 ml लेते हैं।
1: अब कितना
0: और
1: समय लगता है ब्लड लेने में?
0: ब्लड एक डोनेशन का बीच में दूसरा डोनेशन का बीच में हम लोग 3 months का गैप रखते
1: नहीं,
0: हैं,
1: जो ब्लड लेते हैं ना, जो
0: पंद्रह दस
1: प्रोसेस में,
0: पंद्रह मिनट में निकल हो जाता है।
1: जी, और एक बार ब्लड देने के बाद 3 महीने के बाद वही व्यक्ति दोबारा दे
0: दोबारा
1: सकता
0: दे
1: है।
0: सकते हैं।
1: अब डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ की बात करें, क्या हालात है यहाँ पे, लोगों में कितना उत्साह है, कितना लोग आगे आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए?
0: जितना रिक्वायरमेंट है अब तक तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन आगे जाके ये बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग बहुत सारे शिविर रख रहे हैं, कैंप्स रख रहे हैं।
1: और आज के खास दिन में क्या रखा जा रहा है
0: आज
1: प्रोग्राम?
0: का खास दिन में इन हाउस डोनेशन शुरू किया है HGB पंत, और आज ही हो रहा है जंगली घाट में, मैरिज हॉल है
1: जी
0: जंगली घाट स्कूल का पीछे,
1: जी
0: वहाँ पे एक डोनेशन कैंप चल रहा है
1: अच्छा,
0: जिसमें
1: इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन?
0: नहीं कुछ नहीं, ये एप्लीकेशन मिलेगा, जो डोनेट करना मांगता है यूजरी एसोसिएशंस है वो लोग लेटर भी देते हैं DHS को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को और प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनेक्स को, तो हम लोग अरेंज करते हैं, डायरेक्ट वहाँ चले जाते हैं पूरा टीम लेके। 9 o'clock से शुरू होता है
1: नहीं,
0: शिविर।
1: इस पे कोई भी ब्लड दे सकता है या पहले से कुछ रजिस्ट्रेशन
0: नहीं
1: करवाना है?
0: नहीं नहीं वॉलेंट्री है, जो भी आएगा वहाँ पे उन लोग का हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे विद इन 10 to 15 minutes।
1: जैसे कोई हमारे ये प्रोग्राम सुन रहा है, हमारी बातचीत सुन रहे हैं, वो अपना
0: जरूर
1: ब्लड डोनेट करना
0: दे
1: चाहते
0: कर
1: हैं तो जा
0: सकते हैं,
1: सकते
0: कर
1: हैं?
0: सकते हैं।
1: ये तो रही आज की बात, पूरे साल भर आप लोग क्या करते हैं, खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं?
0: काउंसलर्स है अनेक्स के और हमारा ब्लड बैंक के, वो लोग एवरी वीक स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे ये इसका कंप्लीट डिटेल्स बताते हैं। और आपको ये बताते हुए खुश है कि JNRM का 2 professors है, जो एक प्रोफेसर तो ऑलरेडी 80 times डोनेट किए हैं ब्लड खुद, और जब कभी कैंप JNRM में होता है एटलीस्ट 50 to 70 बच्चे डोनेट करते हैं।
1: तो आज के
0: और
1: दिन में आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे सुन रहे हैं, यूथ जो सुन रहे हैं आपको?
0: एक ही एक है, मेल फीमेल का फर्क नहीं है, मेल भी डोनेट कर सकता, फीमेल भी डोनेट कर सकते हैं। फीमेल लड़कियों में एक ही एक बात है, इफ़ दे आर हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड रनिंग देल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ ब्लड, खून कमी रहेगा, तो वो टाइम ब्लड डोनेट नहीं करना, बाकी टाइम में कभी भी कर सकते हैं। और जितने बच्चे यूथ आते हैं जब डोनेट करते हैं उनका उत्साह बढ़ेगा और एक फिलंथ्रोपिक काम करेंगे वो लोग,
1: एक
0: एक
1: आत्मसंतुष्टि होती है।
0: होती है और एक एक या दो या तीन जान बच सकता उनका इससे।
1: डॉक्टर साहब, जैसे बहुत लोग ब्लड डोनेट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनमें एक डर रहता है कि पता नहीं खून लेते समय कुछ दर्द होगा।
0: जेन्युइन क्वेश्चन है, दर्द तो रहेगा, दर्द बोलो तो पिन प्रिक जैसा एक

0: लेते हैं उतना ही दर्द होगा,
1: जी
0: उससे
1: जी
0: ज़्यादा नहीं। थोड़ों को ये हो सकता कि जैसा वो नीडल देखेंगे या थोड़ा खून का फ्लो देखेंगे डर लगता है, सो हाइपोटेंशन हो सकता, गिडीनेस फील हो सकता। सो वो थोड़े देर में कौनसिलवाई करते रहते हैं, सिस्टर्स लोग सब है, हम
1: जी
0: भी वहीं पे है। सो यूजुअली बाय द टाइम डोनेशन होने तक 10-15 मिनट्स तक सेटल हो जाता। इसके बाद भी वो लोग सिर चकराता है या कुछ होने से, वी 10 मिनट्स रिटेन करते हैं पेशेंट को, हर एक पेशेंट को जो डोनेट करता, 10 मिनट्स के बाद ही रिलीव करते हैं। फिर भी वो लोग कंप्लेन करते हैं तो रख लेते हैं, आधा घंटा तक बिठाते हैं पोस्ट डोनेशन फीड दे के, जस्ट लिक्विड्स दे के। अगर फिर भी चकराता है तो वी एडवाइस इंट्रावीनस फ्लूइड वहीं पे रख के दे के सुधारने के बाद ही घर भेजते हैं।
1: क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जैसे किसी किसी को चक्कर आता है
0: वो
1: क्या?
0: चक्कर मेन रीज़न है, चक्कर स्पेशली देखा गया कि मेल्स में ज़्यादा होता है। दैट्स अ जेन्युइन रीज़न, बिकॉज अ गर्ल मेंस्ट्रुएट्स और वो ब्लड देखती है तो डर कम है लेडीज में, वेयर एज इन अ मेल ही डजेंट सी ब्लड सो ऑफन, सो उसको डर रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स। और एक है शॉक, नीडल देख के भी शॉक हो सकता, सो दैट इज़ इमरजेंसी। एक ही इमरजेंसी है जो शॉक है, दैट वी कैन ट्रीट।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है लेकिन उसको थोड़ा सा बुखार है या सर्दी खांसी है, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता
0: नहीं
1: है?
0: करना, नहीं करना चाहिए। हेल्थी पर्सन शुड डोनेट। और डोनेशन का पहला दिन आदमी कंप्लीट रेस्ट लेना है, यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट, पूरा फ्लूइड्स लेना है, उसके बाद आके डोनेट कर सकता। अल्कोहल नहीं लेना प्री डोनेशन एंड पोस्ट डोनेशन ऑल्सो। स्मोकर्स को भी शुड अवॉइड स्मोकिंग प्री डोनेशन एंड पोस्ट डोनेशन।
1: अब अंत में हमारे सुनने वालों को आज के खास दिन पे क्या कहना चाहेंगे आप?
0: जितने वॉलंटरी डोनेट कर सकते हैं संपर्क कीजिए ब्लड बैंक को, हम लोग हाजिर है 24 आवर्स।
1: अब अंत में एक सवाल, जैसे कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है, किसी को अत्यंत खून की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आप लोगों के पास ब्लड डोनर्स की लिस्ट होती है?
0: लिस्ट होती है, ज़रूर होती है, वी कॉल देम। या ऐसा होता है अपना अंडमान में स्पेशली, एक्सीडेंट होते ही वॉलेंट्री उनका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आके इमीडिएट ब्लड देते हैं, वो बहुत ही लकी है अपने
1: तो ये
0: पास।
1: बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ
0: यस,
1: की।
0: यहाँ का अवेयरनेस उतना ज़्यादा है कि ब्लड ज़रूरत है एक्सीडेंट केस में, तो वॉलेंट्री आके दे देते हैं। अगर नहीं हो तो हम लोग कॉल करते हैं, वी हैव द लिस्ट, उनसे ले लेते हैं।
1: तो डॉक्टर कोधंड राम, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने रक्तदान से संबंधित बहुत सारी बातें बताई। हम समझते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं इससे ज़रूर जागरूक हुए होंगे और इस पुनीत कार्य में आगे आएंगे, ब्लड डोनेट करेंगे। कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टर NR कोदंडराम से ली गई भेंट वार्ता, और इसकी भेंट करता थी जयशीला।

0: दोस्तों आज शनिवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों वृक्ष पृथ्वी पर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। वे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि जलवायु को संतुलित रखने, मिट्टी के संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में लगभग 3 ट्रिलियन से अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार के वृक्ष उगते हैं, जैसे अमेजन वर्षावन के विशाल पेड़, साइबेरिया के शंकुधारी वृक्ष तथा भारत के बरगद और पीपल। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करते हैं। अनेक पशु पक्षियों का जीवन वृक्षों पर निर्भर करता है। शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण वृक्षों की संख्या में कमी आ रही है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं। इसीलिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष आयतन के आधार पर जनरल शेरमन ट्री है। इसकी ऊंचाई लगभग 83 मीटर 275 फीट और इसका तना अत्यंत विशाल है। अनुमान है कि इसकी आयु 2200 से 2700 वर्षों के बीच रहती है। यह वृक्ष हजारों वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का सामना करते आ रहा है। साथ ही विश्व का सबसे छोटा वृक्ष बोना विलो ड्रॉप विलो माना जाता है। यह मुख्य रूप से आर्कटिक और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः केवल 1 से 6 सेंटीमीटर तक की होती है। यह वृक्ष जमीन के बहुत करीब उगता है ताकि तेज ठंडी हवाओं और कठोर मौसम से बच सके।

दोस्तों, चींटियां पृथ्वी के सबसे संगठित जीवों में से एक मानी जाती है। कुछ प्रजातियां इतनी विशाल बस्तियां बनाती हैं कि उन्हें सुपर कॉलोनी कहा जाता है। सुपर कॉलोनी लाखों या कभी कभी अरबों चींटियों का समूह होता है जो कई किलोमीटर तक फैली हो सकती है। सामान्य चींटी कॉलोनियों के विपरीत सुपर कॉलोनियों की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे से लड़ती नहीं हैं, बल्कि सहयोग करती हैं। उदाहरण के लिए, अर्जेंटीना चींटी की सुपर कॉलोनी यूरोप और अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली पाई गई है। वैज्ञानिक इन कॉलोनियों को अध्ययन करके सामाजिक संगठन, संचार और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझते हैं। हालांकि कुछ सुपर कॉलोनियां स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरा भी बन सकती है, क्योंकि वे अन्य प्रजातियों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ देती है। चींटी सुपर कॉलोनी प्रकृति में सामूहिक सहयोग का अद्भुत उदाहरण है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ कार्यक्रम
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानू को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है और उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने। लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए, एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई

0: मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहां तक उनको पहुंचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है। वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंस मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से

0: बड़े बुलेट आए जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए, और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं, मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे।

0: या देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है वह करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है। उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है। जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, लगा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना। जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंट आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा।

0: मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैं कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्रपान से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के नहीं लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी, तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है। और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी उनकी जो विदेश स्थिति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना जीडीपी जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, हम सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार।

0: 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी। सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
1: पहले तो शशि जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से एक भारतीय या 3 में से एक भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
0: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
1: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले कितने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
0: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से

0: समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन आधार मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
1: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा यह मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
0: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं, गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
1: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं,

0: उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज

0: अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। और अब सुनिए रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक्स केवल 11 से पूर्ण संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत 2 पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में पूर्ण संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने केंद्र सरकारी कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003 पर भेजे। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन के तिथि से 45 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल spadmin.nia@gov.in द्वारा भी भेज सकते हैं। साथ ही डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
2: Discover करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गौरवगान कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

0: एक रिपोर्ट।
1: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: वकील और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है।

0: डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीनो के लिए जरूरी सीमा से

0: खो गया है।
1: दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले तीन चार दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सातवें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने तीन तीन विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
3: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel.

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुक कर साल भर ठहरता

0: उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक।

0: प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक।
1: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
1: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
2: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
2: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
2: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थी कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे, और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो

0: तो आप घर बैठे 2 बाय 6 फीट का एक स्थान तय करें ना, कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को, और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया।

0: आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है। कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डी यू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मूर्य मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के?

0: क्षेत्र से जुड़ते।
1: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
1: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शौर्य आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेड अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
1: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक, पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं?
1: जी हैं,
0: राधा दन योर ओन कॉम्पोजिशंस
1: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
1: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइव्ड इट।
0: जैसे अभी आप एक एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
3: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

बीते 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए

0: कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महा आचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha, the...
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana, from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत

रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथूला मार्ग से यात्रा करेगा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़

के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22वें ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ प्रिय आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई।

वालन में चार, श्री विजयपुरम में तीन, नानकौरी में दो, मायाबंदर में दो, कानिकोबार और वायुसेना केंद्र कानिकोबार में एक एक मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जनसेवाओं को कल सुबह तक के मौसम के बारे में कहा जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ भारी वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि तेज हवा के चलते वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 जून तक समुद्र में न जाएं। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:02 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि तदनुसार 14 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:28 और 50 सेकेंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।